0: a second changes everything. A minute moves a nation. An hour becomes history. For three decades, NDTV has been there. For the moments that were unstoppable, unmissable, unforgettable. Today, the moment is ours. NDTV 24/7 is now NDTV when it really.
1: Welcome back, viewers. We're getting big news coming in from UP Shamli, where Haryanvi singer Ankit Balyani was shot dead on the 26th of August. He was gunned down outside his gym in broad daylight. The new CCTV footage of this dastardly crime has emerged. Meanwhile, take a look at this report sent by my colleague, Akhil.
2: रात्रि में आपने देखा कल लगभग 3 बजे के आसपास एक इंस्टा पोस्ट वायरल हुई, जिसमें एक गोगी ग्रुप नाम से ग्रुप बनाया गया था, जिसमें एक सोनीपत का गैंगस्टर है जो फरार है, 1 लाख का रिवार्ड अपराधी है, वो भोलू नाम है उसका। उसने क्लेम किया कि इनको हमारे ग्रुप ने मारा है। उसका कहना ये था कि जब गोगी की हत्या हुई थी कोर्ट में, रोहिणी में, दिल्ली में, तो इन्होंने उसके बाद एक कोर्ट में गोली मारने वाली घटना को लेकर के इन्होंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो सॉन्ग बनाया था, और उससे हमारे गैंग के लोग नाराज़ हैं इनसे कि इन्होंने दूसरे पक्ष के लोग, जो टिल्लू ताजपुरिया है, उसके लोगों से मिल करके काम किया था। और हमारे जनपद के सारे अफसर इसमें लगे, जो बहुत चुनौतीपूर्ण काम ये है हमारे यहाँ, तो हमारे स्टेट की जो विशेषज्ञ पुलिस, वो भी इसमें लगी हुई है। हमारे जिले के सारे अधिकारी लगे हैं, हमारी स्वाट है, सर्वलांस है, थाने के सचिव लगे हुए हैं इसमें। अभी तक की जो जानकारी या हम लोग जो निकाल पाए हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा मामला कनेक्टेड हरियाणा से है और वहाँ के लोगों के द्वारा संभवतः काम किया गया है ये।
3: A brutal murder incident has taken place on Wednesday evening at around 6:30 p.m. when Haryanvi

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
5: इट्स द माही वे।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूलेस्ट स्पा एट होम।

0: things, but the chief minister overruled this decision. They should be taken, they should have taken into the confidence to Pratap Sarnaik. Even as we all know that Pratap Sarnaik had declared the all the taxi rickshaw and auto rickshaw and taxi drivers to learn Marathi, and it is, he made it mandatory as per the rule in 1989. And after that, after the deadline passed on 17th August, he started taking action against auto rickshaw and taxi drivers. They issued some notices, more than 1,000 auto rickshaw and taxi drivers. They issued 1 month notice, after some time, most of the union went to met him, and they also asked him for the extension, but he refused to give, and now chief minister overruled his decision, and now the political discussion that allegations are language politics has been erected.
1: Right, absolutely, Prajakta. Thank you so much for joining us and bringing us those important details. We're tracking some more information coming in at this hour. Now, the political slugfest over Rahul Gandhi's student outreach has now moved online. A new website called Jhoot Ki Goonj is now taking aim at his claims. Now, the website claims to have fact-checked about 40 statements made by Rahul Gandhi during his four Chhatra Ki Goonj events. Now, the website claims that out of 40 claims, 29 claims are false and 11 claims are misleading. The BJP has seized on the website, accusing Rahul Gandhi of doing PR stunts and claiming that the youth no longer trusts him. But Congress Party has hit back, alleging that the website was created by BJP themselves, sarcastically, in fact, even wishing its creators best wishes for spreading lies.
2: मोदी मित्र मंडली ने बनाया है और मोदी मित्र मंडली को झूठ के प्रचार की बहुत बहुत शुभकामनाएं
3: यू नो द यूथ ऑफ द कंट्री सो इरिटेटेड एंड एंग्री विद द सीरीज ऑफ लाइज दैट राहुल गांधी स्प्रेडिंग कि आज देश के युवा ने द यूथ ऑफ द कंट्री ने झूठ की गूंज को लॉन्च कर दिया है कि राहुल गांधी ने जितने झूठ बोले उसके पैरेलल के अंदर ये मैंने इंटरनेट से देखा किसी युवा ने मुझे भेजा कि राहुल गांधी की झूठ की गूंज जो है इस देश के युवा ने लॉन्च कर दी तो राहुल पीआर स्टंट करें देश का युवा झूठ की गूंज कर रहा है जहां पे राहुल गांधी ने जो 40 की 40 बातें बोली पिछले चार कार्यक्रमों में वो सब मैं पढ़ रहा था युवा बता रहे थे 40 की 40 या तो झूठ या मिसलीडिंग साबित हुई
4: भारतीय जनता पार्टी युवाओं से जेंजी से घबरा गई है और आज हर यूनिवर्सिटी में एक नेता जाने के लिए तत्पर है मोहन भागवत जी को खुद को अपने संघ छोड़ के आज छात्रों के बीच पर जाना पड़ा राहुल गांधी जी तो पिछले एक साल से दो साल से युवाओं की बात कर रहे थे तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर बेरोजगारी एक समस्या है देश में मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि स्टार्टअप्स क्यों बंद हो गए क्यों युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात करी क्यों नहीं मिली बताएं मैं समझता हूं कि युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर महंगाई बढ़ रही इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं का आने वाले समय में उनके लिए योजना लाएगी नहीं तो खुद ही वह सरकार से बाहर हो जाएगी
1: Well, let's now take it to Karnataka. Karnataka's cabinet is once again in the spotlight as B. Nagendra's induction triggers a fresh political row. With Chief Minister back in Bengaluru after his Delhi meetings, questions are now being raised over a possible cabinet rejig. One vacant berth is also expected to be filled, while another minister could be asked to step aside. Amid the speculation, Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar has backed Nagendra, calling him a disciplined party soldier and saying that there is no decision for now. But the cabinet adjustments in focus, Nagendra's in fact future, remains under close watch.
5: For Nagendra, yavattu kuda pakshad vichadalli hinde 2 varsha hindene kuda yeno nirapradhi namma ottadakke naave athanu kelli resignation tegekondiddo yavattu kuda pakshada obba shissina sipahi avara nayakatvadalli namage aparvadanta vishwasa ide nodana ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರದ ಅಂತದೇನು ಇಲ್ಲ
6: ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಐ ನೋ ನೋ ಸಚ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್
7: ವೈ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್
6: ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर प्योर मसाला।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आपके और मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool.

0: क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
2: अरे मेरे राजा।
4: Three decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: Well, Maharashtra's Marathi language rule has once again triggered a fresh political showdown. Chief Minister Devendra Fadnavis has given auto and taxi drivers one more year to learn Kaam Chalao or functional Marathi, saying that no action will be taken against them during this period. But the opposition has hit back. UBT Sena MP Arvind Sawant has said that Mumbai is home to people from across the country, asking whether they can simply be thrown out of their homes. He has accused the BJP of using the language issue to spread hatred and gain political mileage. The one-year extension actually could ease the pressure on drivers, but the political fight over Marathi in Maharashtra seems far from over.
1: चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठना के लोग मुझे मिले. उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए जी. वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है. लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं, कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है. उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए एक साल का समय उनको दिया जाए. राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, एक साल का समय उनको दिया जा रहा है. इस एक साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
2: भाषा सिखाने के लिए कई लोगों को इकट्ठा किया था, उसमें लेखक भी थे, साहित्यिक भी थे, मराठी भाषा के जो जानकार है वो भी थे, और सभी ने लोगों ने मिलकर 1,60,000 जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है. मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया, और इसलिए ये मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है रोजाना की जो हमारी जो बोली भाषा है उसमें उनको भी आना चाहिए.
3: वहाँ गुजरात में जाके कौन सी भाषा में भाषण करते हो? हिंदी में भाषण करते क्या? नहीं ना, क्यों? वहां जाके गुजराती में क्यों भाषण करते हो? फिर राज्य की भाषा है, और राज्य की भाषा मुंबई राजधानी है. हमने तो सबको समेट लिया है, पूरा भारत यहां है मुंबई में. कौन से राज्य ऐसा बताओ कि जिस राज्य का इंसान मुंबई में रहता नहीं है? मुंबई के मराठी लोग बड़े दिल के रहे, सभी को समेट लिया. आज समा लिया तो उसको ही घर से बाहर निकालेगो क्या? ये जो जहर फैलाने का बात है ना, ये बड़ा दिल को दर्द देता है. ये जो पार्टी सत्ता पे बैठी है ना, उनका यही धंधा है, नफरत फैला लो, राजनीति करो, लोगों के जाति के पाति के धर्म के रीजन के ऊपर करते रहो. नहीं तो फिर मुंबई में ऐसे लोग कैसे आए?
4: हर भाषा का रेस्पेक्ट है. यदि इंग्लिश का रेस्पेक्ट है, हिंदी का रेस्पेक्ट है, उड़िया का है, कन्नड़ का है, मलयालम का है, मराठी का है, गुजराती का है, मैथिली का है, भोजपुरी का है, नागपुरी का है, मगही का है, बंगला का है, हमारा संविधान हमारे विचारों को और हमारे अधिकार को रेस्पेक्ट देती है. जब जब तानाशाह को डर होता है तो आतंक पैदा किया जाता है. तानाशाह जब भी कोई बनता है तो उसके वह कायर होता है, इसको समझ लीजिएगा. कोई भी देश की संस्था विचार कभी तानाशाह नहीं होता. अब ही हर तरह के विचारों को हम थोपते हैं.
0: West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will join his party leaders outside Jadavpur University for a collective rendition of Vande Mataram. Today, August 28th is being observed as Patriotism Day. This comes in the wake of tensions triggered by anti-national graffiti on campus. That's what he has said. Left and right-wing students clashed, and after which student administration, university's administration is under scanner, and the Chief Minister Subhendu Adhikari has ordered a fresh probe into the incident. Subhendu Adhikari has reiterated that his stand is that there's no place for anti-national activities under the BJP rule and that such conduct will not be tolerated. Meanwhile, the political slugfest over Rahul Gandhi's student outreach has now moved online. A new website called Jhoot Ki Goonj is taking aim at his claims. The website claims to have fact-checked 40 statements made by Rahul Gandhi during 4 Chhatron Ki Goonj events that have been held so far. The website claims out of 40 claims, 29 claims

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्गन मसाला।
4: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: साहित्यिक भी थे, मराठी भाषा के जो जानकार है वो भी थे, और सभी ने लोगों ने मिलकर 1,60,000 जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है। मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया, और इसलिए ये मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है रोजाना की जो हमारी जो बोली भाषा है उसमें उनको भी आना चाहिए।
1: वहाँ गुजरात में जाके कौन सी भाषा में भाषण करते हो? हिंदी में भाषण करते क्या? नहीं ना, क्यों? वहां जाके गुजराती में क्यों भाषण करते हो? फिर राज्य की भाषा है, और राज्य की भाषा मुंबई राजधानी है, हमने तो सबको समेट लिया है, पूरा भारत यहां है मुंबई में। कौन से राज्य ऐसा बताओ कि जिस राज्य का इंसान मुंबई में रहता नहीं है? मुंबई के मराठी लोग बड़े दिल के रहे, सभी को समेट लिया, आज समा लिया तो उसको ही घर से बाहर निकालेगो क्या? ये जो जहर फैलाने का बात है ना, ये बड़ा दिल को दर्द देता है। ये जो पार्टी सत्ता पे बैठी है ना, उनका यही धंधा है, नफरत फैला लो, राजनीति करो, लोगों के जाति के पाति के धर्म के रीजन के ऊपर करते रहो, नहीं तो फिर मुंबई में ऐसे लोग कैसे आए?
2: हर भाषा का रेस्पेक्ट है, यदि इंग्लिश का रेस्पेक्ट है, हिंदी का रेस्पेक्ट है, उड़िया का है, कन्नड़ का है, मलयालम का है, मराठी का है, गुजराती का है, मैथिली का है, भोजपुरी का है, नागपुरी का है, मगही का है, बंगला का है, हमारा संविधान हमारे विचारों को और हमारे अधिकार को रेस्पेक्ट देती है। जब जब तानाशाह को डर होता है तो आतंक पैदा किया जाता है। तानाशाह जब भी कोई बनता है तो उसके वह कायर होता है, इसको समझ लीजिएगा। कोई भी देश की संस्था विचार कभी तानाशाह नहीं होता। अब ही हर तरह के विचारों को हम थोपते हैं।
3: Slipping to short break, news and updates continue in a moment from now. Stay tuned to Breaking Ground.

0: This is not something new. In the recent past as well, we saw a couple of officers face similar action. One of them even moved court, and the Karnataka Administrative Tribunal also gave him relief and quashed the suspension. This happened very recently. Now, at the back of all of this, and the Karnataka Home Minister Priyank Kharge in the past and now questioning the RSS, them not being registered, also questioning how they go about doing their marches without actually taking permission. This is something that has been going on. Now, the backdrop of this, two teachers in Yadgir have once again been suspended. The Union Minister, Mr. H.T. Kumaraswamy, has questioned, this move, which of course is being rebutted once again by Mr. Priyank Kharge, who goes on to say that action should be initiated against such individuals. And he has also questioned how Mr. Kumaraswamy has spoken about the RSS in the past. So it's once again a war of words that's ensuing between the two leaders. We'll really have to see whether these two teachers who are now facing suspension, whether they'll seek the legal route as well to really challenge the suspension orders.
1: Right, Deepak, thanks for joining me live on the story. We, of course, will bring all the reactions, developments from the ground to our viewers here on NDTV. Moving on, a fresh political firestorm has erupted over the movie Toxic. Former BJP leader and We the Leaders founder Annamalai has slammed actor Yash's movie. Annamalai raises sharp questions over Toxic and its portrayal of women. He questions the message such depictions send to society and how the film received censor clearance despite its content. Annamalai also argues that cinema can have a real impact on how people think and behave, with women's safety already a serious concern. He questions whether the film shows women with due respect that they deserve.
2: 104 கோடி ஃபர்ஸ்ட் டே வசூல் பண்ணிருக்கு. 104 கோடி நேத்து ரிலீஸ் ஆன படம். அந்த படத்துக்கு பேரே பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டாக்ஸிக்கா பல விஷயத்தை பேசுறோம், அந்த மாதிரி படத்தினுடைய பேர் இருக்கு. அப்பதான் நான் பார்த்தேன், இன்னைக்கு படத்திலேயே பெண்களை சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அது முதல் நாள்ல 104 கோடி வசூல் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம குழந்தைகளை பார்க்க வச்சு, மாணவ செல்வங்களை பார்க்க வச்சா ஒரு பெண்களுடைய பாதுகாப்பு எங்கே நடக்கும் இந்த நாட்டில்? நாம் எல்லாம் ஊர் ஊராக கல்லூரி கல்லூரியாக போய் பெண்கள் பாதுகாப்பை பற்றி தொண்டை தனியை கத்தி நாம் பேசுகிறோம். ஆனால் ஒரு படத்தை எடுக்கிறாங்க, சென்சார்லையும் கிளியர் பண்ணுறாங்க, தியேட்டருக்கு கொண்டு வர்றாங்க, அந்த படத்தில் பெண்களுக்குரிய உரிய மரியாதை கொடுக்கப்பட்டிருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா, மரியாதை கொடுக்கப்படவில்லை. எனக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் படத்தில் நடக்குது, அதனால் அந்த தாக்கமும் உங்கள் மேலே இருக்குது. ஆனாலும் நான் உங்களிடம் அன்போடு வேண்டிக் கொள்வது, ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ரிலேஷன்ஷிப் இன்றைக்கி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஜென்ரேஷன். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே ஜென்சியாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் அ பவுண்ட்ரின்னு. உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் அ பவுண்ட்ரி பிட்வீன் அ பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல், உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் இந்த தலைமுறையில் இதை பற்றி நான் அதிகம் பேசாமல் உங்களை சிந்திக்க மட்டும் நான் விட்டுறேன். ஏன்னா எங்கள்கிட்ட சொல்யூஷன் எதுவும் கிடையாது.
3: Imagine having a movie called Toxic. So he, the director, the producer, the actors, all of them subscribe to toxicity. Where? In relationships? Between human beings? Violence is accepted? I mean, that is what the movie is subscribing for. And when Annamalai talks about responsible relationships, I think he is making a very, very important point today. In the entire genre of movies that are coming out and affecting young minds and old minds alike in a negative manner towards women, towards sexuality, towards dignity and respect to women and sex itself. Because the movie is implying that toxic, violent, aggressive sex is okay and women can be treated as objects and women can be treated as possessions and women can be assaulted sexually. It's okay. That is toxic.
4: We have a reasonable cinematic freedom. We all respect. But naming a movie Toxic itself and showing all the violent elements, some sort of violence is okay, but this is too much violence. If you have seen the trailers and all, you would understand. Too much violence. And also showing the woman, and like many people said, whenever a man and woman talks, it invariably enters in a physical relationship. So is it not taking it too far is a natural question anybody will ask. And, you know, how can there be acceptance for these kind of movies is definitely a question. Yes, times have changed. We can argue like that. But at the same point of time, is it not stretching too far? Is a very valid question that's raised by MMLA. I think we as a civil society should debate about it. I know, what are the levels of violence that are acceptable? What are the levels of depiction of movies that are acceptable? Because in sometimes it will come to the OTT. It will come in, you know, all the other forms. Our children are going to see it.
1: The Marathi language rule in the state of Maharashtra has triggered a fresh political showdown. Chief Minister Fadnavis has given auto and taxi drivers one more year to learn functional Marathi, saying no action will be taken against them during this period. But the opposition is hitting back. UBT Sena MP Arvind Sawant says Mumbai is home to people from across India, asking whether they can simply be thrown out of their homes. He has accused the BJP of using the language issue to spread hate and gain political mileage. The one-year extension may ease the pressure and drivers, but the political fight over Marathi is clearly far from over.
5: ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठना के लोग मुझे मिले. उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए. वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है. लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं. कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है. उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए एक साल का समय उनको दिया जाए. राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, एक साल का समय उनको दिया जा रहा है. इस एक साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
6: जो मराठी भाषा सिखाने के लिए कई लोगों को इकट्ठा किया था, उसमें लेखक भी थे, साहित्यिक भी थे, मराठी भाषा के जो जानकार है वो भी थे, और सभी ने लोगों ने मिलकर 1,60,000 जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है. मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया, और इसलिए ये मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है रोजाना की जो हमारी जो बोली भाषा है उसमें उनको भी आना चाहिए.
7: वहाँ गुजरात में जाके कौन सी भाषा में भाषण करते हो? हिंदी में भाषण करते क्या? नहीं ना. क्यों वहां जाके गुजराती में क्यों भाषण करते हो? फिर राज्य की भाषा है, और राज्य की भाषा मुंबई राजधानी है. हमने तो सबको समेट लिया है, पूरा भारत यहां है मुंबई में. कौन से राज्य ऐसा बताओ कि जिस राज्य का इंसान मुंबई में रहता नहीं है? मुंबई के मराठी लोग बड़े दिल के रहे, सभी को समे लिया. आज समा लिया तो उसको ही घर से बाहर निकालेगो क्या? ये जो जहर फैलाने का बात है ना, ये बड़ा दिल को दर्द देता है. ये जो पार्टी सत्ता पे बैठी है ना, उनका यही धंधा है, नफरत फैला लो, राजनीति करो, लोगों के जाति के पाति के धर्म के रीजन के ऊपर करते रहो. नहीं तो फिर मुंबई में ऐसे लोग कैसे आए?
1: Prime Minister Narendra Modi celebrated Raksha Bandhan at his official residence, interacting with children who visited him on the occasion. The Prime Minister spent time with the young visitors as they tied rakhis and exchanged festive greetings, marking the spirit of the festival that celebrates bonds of affection and protection.
8: आपका बचपन का सपना?
9: आप लोगों को मिलने का.
10: I was watching Rahul covering Bengal elections and all that. So suddenly I saw Veer and him eating jhalmudi in his studio. this is such a political statement. I need to put Jhalmuri in my menu in Delhi.
8: So note that we have a very small, tiny IndyTV contribution to the food that Gagan's serving
10: up. I said, now I'm going to put Jhalmuri in my menu and not Belpuri.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

Let me update you on the relief efforts. As you know, that we had, as this tragedy unfolded, the same day we mobilized our humanitarian assistance efforts, and we had one aircraft. The first aircraft departed on 26th August in the evening time. It carried 10 tons of relief materials, which included temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps, and medicines. Thereafter, there was a second departure which happened yesterday, 27th August, at around 10:30 a.m. in the morning. This particular flight carried 37.5 tons of relief material, which included tents, blankets, hygiene kits, solar lamps, dewatering pumps, kitchen sets, gen sets, medicines, and food items. And then we are considering the third flight to be leaving this evening, expected to be leaving this evening. We shall keep you updated of all the material that is going on this particular flight, as also other support systems that will go with that. This, again, the items that this particular flight will be carrying will have portable gen sets, dignity kits, food, water purification tablets, medicines, things that have been made available or requested by the Nepali side to us. So we shall keep you updated. The total load of this particular flight would be something around 12, 13 tons. Overall, you know, keeping in mind that this flight also takes off, we would have sent 60 tons of relief material to Nepal by way of our humanitarian assistance. But please do watch out for our post. We'll keep you updated on the third relief flight. So that is what I had to say on the situation as far as Indian nationals are concerned in Nepal, and also our relief efforts. I will take further questions on this particular matter and other things that you would have for me to answer. ठीक है मैं एक बार हिंदी में इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ. देखिए, 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, वो 21 नागरिक भारतीय नागरिक कल काठमांडू पहुंचे, उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ. और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा कल शाम को, और आज उनको सबको उसके लिए व्यवस्था करके उनको हवाई जहाज में बैठाया गया. हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया और आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं. इंडिगो की जहाज से पहुंचे हैं, कुछ देर पहले पहुंचे हैं. उसके अलावा आप लोग को हमने पहले जानकारी दी थी कि 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली वन, उनको भी वहां से बचाया गया है. इनके बारे में भी आपको विधिवत नहीं नाम के साथ हम लोग ने बताया कि कौन कौन से ये 63 लोग हैं. उसके अलावा आज की खबर यह है कि 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं. इनके बारे में ज्यो ज्यो हमारे पास सूचना मिलेगी, आपसे हम साझा करेंगे. इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो लापता लोगों का जो लिस्ट है वो अभी 320 का है, लेकिन ये मान के चलिए, चूंकि स्थिति हर घड़ी बदल रही है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है. इसके अलावा 100 ऐसे लोग हैं करीबन जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है. ये भारतीय मूल के लोग, अलग अलग नागरिकता इनके पास है, विदेशी नागरिकता. इधर विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है. वहीं काठमांडू में हमारे दूतावास में और बीजिंग में हमारे दूतावास में, वहां भी लगातार 24 घंटे कंट्रोल रूम चल रहा है. मैं आपको यह भी बताऊं कि चीनी तरफ, टिबेट ऑटोनोमस रीजन जो है, उस तरफ 400 के लगभग में भारतीय नागरिक वहां पर, जिससे हम संपर्क कर पाए हैं, और ये सभी लोग सुरक्षित हैं. इनकी अपने परिवारजनों से बात हुई है, क्योंकि वहां पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, और इनसे हमारे एम्बेसी या तो इनसे खुद ही इनसे बात कर रहा है, या इनके ट्रैवल एजेंट और इनके

0: जो ग्रुप के लीडर हैं उनसे बात कर रहा है। कई एक मामलों में इनके परिवार वालों ने हमारे एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया है, वहाँ पर संपर्क किया है बीजिंग में, और अभी हमारी एम्बेसी इन 400 जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था कर रही है किस प्रकार से वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। आपको ये बताऊँ कि चीनी तरफ भी बहुत सारे वहाँ भी भूस्खलन वगैरह हुआ है जिसके कारण सड़कें उड़के अभी ठीक नहीं है, तो जो जो कनेक्टिविटी का जरिया खुलता रहेगा ये लोग जो हैं वहाँ 400 के लगभग में लोग जो मैंने बताया वो भारत वापस आ सकते हैं। जहाँ तक मानवीय सहायता की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 तारीख को हमने पहला जहाज भेजा जिसमें कि 10 टन सामग्री मानवीय सहायता सामग्री था, इसके अंदर कंबल, खाने पीने की चीज़, दवाइयाँ, उसके अलावे सोलर लैंप और अन्य चीज़ें भी थी। उसके अलावे कल 27 तारीख को हमने दूसरा जहाज भेजा था जिसमें 37.5 टन मानवीय सहायता हम लोगों ने नेपाल को प्रदान किया था, और ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ की सरकार ने हमसे अनुरोध किया। और तीसरा जहाज भी आज जाने क्रम में है जिसके बारे में आपको हम अवगत कराएंगे जब वो ये कार्य पूरा हो जाएगा, और ऐसा मानना जा रहा है कि इस जहाज में करीबन 12 से 13 टन मानवीय सहायता इसके जरिए भेजा जा रहा है नेपाल। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं हमारे भारतीय नागरिक को सुरक्षित करने के लिए, और वहाँ पर जो भी हो सकता है नेपाल को भी हम लोग जो सहायता प्रदान कर सकते हैं उनके अनुरोध के हिसाब से वो भी हम कर रहे हैं। तो ये था नेपाल के ऊपर, बाकी अब सवाल साहिल।
1: सो गुड आफ्टरनून, आई एम साहिल पांडे फ्रॉम ANI न्यूज एजेंसी। सो वी आर सीइंग कंसिडरेबल असिस्टेंस बीइंग रेंडर्ड टू नेपाल, हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर स्टिल मिसिंग ऑफ फियर डेड। What is government of India doing about their situation, sir? If you can brief us on that, thank you.
2: So there are reports that the Nepalese government has actually refused offers of assistance from many, many countries. What is the position vis-a-vis India? Do we have a free hand in sort of rendering the relief efforts? And secondly, I just wanted to check this. You have mentioned the number of people who are non-contactable or missing, but what is there any sort of evidence of a death toll of the Indians? Have any bodies been recovered or anything like that? Thanks.
0: Keshav.
3: Thank you, spokesperson. Keshav Padmanabhan from The Print. Yesterday, the Sri Lankan government announced, I think, $1 million in aid to Nepal. So I just wanted to check whether the Indian government is considering any such figure, or has any such figure been requested by Nepal so far? And the second question is on the special representative stock. You've had the 8-point consensus, and you find the mention of this early harvest deal again, which comes from last year, but there seems to be momentum on that. The 2005 agreement called for a packaged deal across the entire border, whereas now you're talking about an early harvest deal. So what really is the situation? If you can give us some understanding on that, I'd be grateful.
0: Uma?
4: Sir, I have two questions. Would India also be considering sending field hospitals to Nepal? And my second question is, do you have the number of the Indians who have been deported from the US and UK? And there have been reports that Saudi Arabia has made some changes in its employment policy and they are sending back Indians from there. So if you can give some details on that.
0: Sachin.
5: Sir, I am Sachin Budholia, Hindustan Samachar. Sir, in Kathmandu, there are some reports that have been sent to the NDRF team to the rescue operation in Sahita ke liye bhejne ka offer kiya tha. लेकिन वहाँ से चीन सरकार की तरफ से कोई दबाव था जिसके कारण से नेपाल सरकार ने मना कर दिया है, ये वहाँ की ऑफिशियल रिपोर्ट आ रही
0: है। सो कमिंग फर्स्ट टू साहिल, योर क्वेश्चन एंड दैट विल पार्टली आंसर श्रीधर व्हाट यू आस्क्ड। सचिन, आपने जो बोला, यू आर अवेयर ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दैट इंडिया हैज रेंडर्ड टू नेपाल सो फार। Two aircraft, as I told you, with relief materials, they have already been sent. And third, we are expecting a third aircraft also to carry humanitarian

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आजकल मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.

0: says the problem is recurring with overflowing master storm water and sewer lines along sector 47 and 49 dividing the road, allegedly sending sewage water and rainwater into this upscale colony, affecting nearly 200 households. The residents argue that pumping out the water is a necessity. It's the only way to prevent homes and internal roads from being flooded. But the GMDA has objected to the discharge of the water being pumped from inside into the roadside surface drain, saying that these drains are too narrow and are designed only to carry road runoff, not large volumes of water from residential complexes. Officials have warned that continued pumping onto the public roads could lead to FIR, while residents maintain they are left with little choice. What can they do? The fact is that the authorities in Gurugram have failed to provide any tangible solutions for the rainwater flooding every single year. And when the people, those who are facing problems, are trying to find solutions, they are being threatened with legal action. My colleague Kanika was on the ground to get a sense of what is happening there. Take a look.
1: मेरी मौजूदगी इस वक्त गुड़गांव के सेक्टर 49 साउथ सिटी पार्ट 2 के बाहर में मौजूद हूँ. ये अपार्टमेंट है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोसाइटी बनी हुई है. लेकिन अब से कुछ दिन पहले, जब दो दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी गुड़गांव में, तो इस सोसाइटी के अंदर भी, इस कॉलोनी के अंदर भी पानी भर गया था. पिछले दिनों जो है यहाँ पर पंपिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया ताकि पानी को बाहर सड़क के पास जो ड्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है उसमें डाल सकें. लेकिन क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम भी पूरा ब्लॉकेज था, इसीलिए पंपिंग सिस्टम के थ्रू लोगों ने पानी को बाहर निकालने की कोशिश की. देखिए किस तरह से जो पंपिंग है, पाइप जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे लगातार. जो कि किस तरह से जो अंदर का एरिया है वहाँ पे इस पाइप को कनेक्ट किया गया है ताकि पाइप के ज़रिए जो है पानी को सड़क की तरफ जो है बाहर निकाला जा सके और सोसाइटी के अंदर जो पानी भर रहा है उसको मेन रोड पर फ्लैश आउट किया जा सके. लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर पंपिंग के ज़रिए जो है पानी को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, जिस दौरान जो है यहाँ पर गुड़गांव अथॉरिटी के लोग पहुँचते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर लोकल सिटीजन को ये करने से मना करते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी जब यहाँ पर लगातार पंपिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया और इसको यूज़ किया गया, तो यहाँ पर अथॉरिटी की ओर से लोकल रेसिडेंट को और RWA के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये कहा गया कि अगर वो इस चीज़ को नहीं रोकेंगे तो उनके ऊपर शिकायत होगी.
2: पाइप चलाया है, वो पंप चलाया है, ये यहाँ पे लगाया है, हमने ये चलाते हैं, इसका ये जो पाइप पीछा है.
1: तो MCG वाले आए थे, मतलब जो अथॉरिटी वाले होते हैं जो सफाई सफाई करते हैं.
2: MCG वालों ने ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है पीछे.
1: हाँ,
2: ट्रैक्टर के थ्रू एक मोटर होती है.
1: हाँ,
2: उसका काम रोड से पानी उठा दे पार्क में फेंकना.
1: तो हमने पाइप पाइप भी आप लोगों के निकाल दिए थे, वहाँ पे छीन वीन लिए थे क्या? पूरे मामले के बाद लोकल रेसिडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक जो है फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी बाहर निकल के आती है कि जब लोकल रेसिडेंट्स ने पंपिंग पाइप के जरिए पानी को बाहर निकालने की कोशिश की तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको FIR की धमकी दी गई.
0: So there are two important questions that need to be answered here. One, what are the provisions as far as these societies are concerned for drainage of this system? And if the authorities are unable to do it, what are these localities, these posh areas supposed to do? That remains a big question. Hemlata Goyal is the secretary of the RWA who is joining us at this moment. And we are also being joined by Mr. Krishna Bhati. He is the president of the RWA of the area that you just saw. Thank you so much for speaking to us. Bhati sahab, sabse pehle main aapse janna chahunga ki pani jo bharta hai, kya ye har saal ki samasya hai? Jab aap logon ne yahan par ghar liye the to wahan par kya drainage ka proper pravadhan nahi tha? Because iska naksha to pass authorities nahi kiya hoga.
3: Authority se pass naksha hua hoga ji, iska sare flat bane hue hain. लेकिन जब से बने हैं, सदियों से 20-25 साल से ही यहाँ पे पानी भरता आ रहा है. पानी का कोई इंतजाम नहीं है. हम बाहर पानी ज्यादातर पाइप वगैरह रेन वाटर से, हमने पार्षद से भी शिकायत की, पार्षद ने भी हमारा काम किया था, तो पानी निकालने का बाहर को रोड पे करते हैं. एक बार ये GMD के भी आगे

0: कि जी आप ऐसे मत खुला छोड़ो इसको, उन्होंने हमारा पाइप वगैरह हटाया था, फिर वो पाइप मुगे जी इसमें इसमें जो जा रहा है लाइन इसके इसमें कनेक्ट करो इसको। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है, सबसे टू में सबसे
1: दिस
0: ज्यादा
1: इज
0: पानी की परेशानी,
1: राइट हेमलता जी, दिस इज अ पॉश
0: पानी
1: एरिया,
0: भरता चार चार पांच पांच फुट पानी भर जाता।
1: चार चार पांच पांच फुट पानी भर जाता है इन द रेजिडेंशियल एरियाज।
0: हाँ
1: हेमलता
0: जी, गाड़ियां
1: हेमलता जी, मैं
0: तक
1: आपसे
0: डूब
1: ये बात
0: जाती है।
1: समझना चाहूंगा कि या तो जो अथॉरिटीज हैं जीएमडीए, या तो कोई आपको सोल्यूशन दे कि बार बार जो पानी भरता है उसका वो क्या निपटारा करेंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं और आप लोगों को मजबूरी में पानी बाहर पंप करना पड़ता है तो फिर एफआईआर की धमकी देके गए आप लोगों को।
2: अब देखिए ये तो
0: हम
2: मुझे नहीं पता,
0: पानी को
2: वो
0: तो बाहर नहीं,
2: एफआईआर की मुझे, हाँ भाटी जी को पता होगा, मुझे नहीं पता है कि कोई धमकी दे गए हैं, मगर उन्होंने हमारा पाइप खोल के डाल दिया है कि आप इसमें ड्रेनेज में डालें, सड़क पे पानी नहीं फेंकेंगे। मर चुकी पानी इस कदर होता है, ड्रेनेज सारे ओवर फ्लडेड होते हैं तो पानी जाएगा कहाँ, पानी बाहर अंदर करता रहता, पानी कहीं जाता नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आज से नहीं, 10 साल से, 12 साल से है। पहले शायद वो बाहर निकल जाता था, वहां ड्रेनेज निकलती थी, मगर बीच में शीशपाल बिहार बनने के कारण रास्ता बंद हो गया, पानी का जो फ्लो जिस तरफ जाता था वहां एक दीवार खड़ी होने के कारण फ्लो बंद हो गया, पानी हमारे ब्लॉक में भरने लगा। इवन वर्षा
0: हाँ
2: होती
0: तो
2: है 2 घंटे
0: पूरी
2: की तो हमारे
0: सिचुएशन है,
2: रेजिडेंट
0: लेकिन
2: सो नहीं
0: हमारे
2: पाते
0: पास
2: रात
0: ज्यादा
2: तक
0: पानी
2: कि
0: भरता
2: कहीं
0: है।
2: घर में पानी ना आ जाए, घर में, और घर में पानी आता था अभी तक, पिछले साल तक घरों में पानी आया, इस साल अभी तो वर्षा बची है, किसी दिन आ सकता है, बहुत पानी आएगा तो घरों में भी आ जाएगा, अभी उतना पानी वर्षा हुई नहीं है। तो हाँ, तो अब ये बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, हमने 5 पंप लगा रखे हैं, 5 पंप का पानी कहाँ फेंके, पानी तो बाहर ही फेंका जाएगा मगर वो बाहर भी नहीं रुकता, क्योंकि बाहर भी पानी भरा होता है तो अंदर पैक करने लगता है।
1: दिस इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम एज फार एज गुरुग्राम इज कंसर्न, देर आर नो सोल्यूशंस एंड नो ड्रेनेज, इनफैक्ट प्रॉपर फैसिलिटीज। बट भाटी साहब, इस जो आपने अथॉरिटीज से जीएमडीए वगैरह से बातचीत की, उनका अब इतने सालों से लगातार ये समस्या है, तो कोई सोल्यूशन की बात हुई है? क्या इसमें किया जा सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है, या जैसा गुरुग्राम पूरा का पूरा राम भरोसे चल रहा है वैसा आप लोगों को भी छोड़ दिया गया है?
2: नहीं, इन्होंने हमारे यहाँ वैसे वाटर हार्वेस्टिंग का
1: एक मिनट
2: इंतजाम
1: मैडम,
2: किया
1: एक
2: था।
1: मिनट,
2: अच्छा
1: भाटी साहब, भाटी साहब,
2: बाकी
1: रोड
2: साहब,
1: पे
2: हाँ
0: ब्लॉक वाले तो रोड पे छोड़ेंगे पानी को, बाहर ही निकालेंगे अपने घरों से। जब घरों में पानी भर गया था आपकी बार भी, जब ये 2-3 दिन पहले बारिश हुई, सबके घरों में पानी भर गया था, हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता जी पानी।
1: सर, लेकिन कुछ सोल्यूशन की बात हुई है, उन्होंने कुछ बताया है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हर साल की
0: तो
1: समस्या
0: इसका
1: है।
0: सोल्व तो यही करेंगे ना जी, जेएमडी एमसीजी नगर निगम वाले यही सोल्व करेंगे ना जी पानी के। तो
1: तो इस बारे में क्या आप लोगों की उनसे कुछ बातचीत हुई है?
0: हाँ, हमारी बातचीत हुई है और हमारे पार्षद ने काम भी कराया है, ऐसी बात नहीं है। 2 रेन वाटर भी बनाए हमारे पार्कों में, दोनों में, एक बाहर एक अंदर, ब्लॉक के अंदर एक बाहर वाले में, सिटीजन पार्क में रेन वाटर बनाए हैं, और पंप जो पानी आता है वो मोटर भी लगाई है पानी बाहर निकालने के लिए। चलो संत तो हो रहा है, लेकिन पानी
1: नहीं,
0: बरसात ज्यादा
1: पर
0: आ जाती है
1: हेमलता
0: फिर
1: जी
0: दबा जाता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्यन मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: हाउ?
4: मेक ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
5: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा प्योर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: little bit of a word salad, are they the publisher or are they not the publisher? What are the changes? पहले ये बताइए बाबा।
1: देखिए पहले तो हमें बताया गया था जब ये किताब की जब चर्चा हुई तो ये कहा गया कि ये बहुत ही पर्सनल नेचर का किताब है, इसमें सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से जो मुलाकात हुई अपने जीवन के बारे में उन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। लेकिन जब ये बात आज आई है इसके बाद जो शुरू में तो एज यूजुअल पता करने की कोशिश की तो सबने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि बाबा हम तो नहीं मालूम है, हमारा उतना है नहीं, अहमद भाई थे तो पता चलता था, अहमद भाई है नहीं तो अब अंदर की बात। तो ये बात सही भी है कि 10 जनपद में शायद उतना आजकल के जो नेता हैं उनका उतना आना जाना शायद नहीं है, या इतना विश्वास सोनिया गांधी का वो नहीं जीत पाए। लेकिन ये बात पता चली है और पता नहीं मैं कितना सही हूँ, लेकिन जो बात कांग्रेस के 4-5 नेताओं से बातचीत करने पर पता चली है, 3 चैप्टर को लेकर के एतराज है। उसमें एक चैप्टर चाइना को लेकर के, चाइना को लेकर के है कि उसमें ये कहा शायद लिखा गया है कि चीन जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा करता रहा और सरकार किस तरह से देखती रही, इस पर एक चैप्टर है। एक चैप्टर संघ के ऊपर है, संघ के ऊपर आपको मालूम है कि कांग्रेस राहुल गांधी सब रहते हैं कि संघ ने किस तरह से संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और एक चैप्टर प्रधानमंत्री पर है।
0: ओके,
1: इससे आगे मैं न जानता हूँ न नहीं मैं बता पाने।
0: तो
1: अब आप सब सोच लीजिए अपने अपने दिमाग में, अखिलेश कुछ ज्यादा ऐड कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री
0: बताइए। अखिलेश, एनीथिंग इन पर्टिकुलर
2: जो मैं सुना है, देखिए जितना मनोरंजन ने बताया वो तो अपनी जगह पर है। जो प्रधानमंत्री के बारे में चैप्टर है उसमें ये बातें कही गई कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी, तो उस मुलाकात में उनकी जो बातचीत हुई है उसका विवरण उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन अपने इस किताब में दिया।
0: उनकी मुलाकात तो बहुत बार हुई होगी, कौन सी वाली मुलाकात?
2: कि कोई ऐसी मुलाकात हुई इसमें कि दोनों आमने सामने थे, दोनों ही थे, इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था, तो ये 1-to-1 बातचीत उनकी हुई, कुछ इस तरह की बात हुई जिसमें कि उन्होंने अपनी पुरानी जो बातें थी, पुराने जो पीएम मोदी के बयान थे उनके बारे में शायद उनका जिक्र किया पीएम मोदी से, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते, जब किताब आएगी, जब आती है, जिस फॉर्म में आती है उसको पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा, लेकिन शायद उस कन्वर्सेशन का जिक्र उन्होंने किया, ये एक इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं चाइना वाली बात, क्योंकि आप जानती हैं कि पिछले सेशन में जो बजट सेशन हुआ था फरवरी में, उसमें पूर्व जो सेना प्रमुख थे नरवणे, उनकी किताब को लेकर के तथा कथित किताब, क्योंकि किताब पब्लिश नहीं हुई थी, पब्लिशर ने भी कहा कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, खुद उन्होंने भी कहा, नरवणे ने भी, कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई। लेकिन जो राहुल गांधी ने जिस तरह से उसको बड़ा मुद्दा बनाया था, मुझे लगता है कि एक बार फिर से उसी तरफ बातें जा रही होंगी, ये भी एक मुद्दा होगा।
0: सो व्हेन यू सेइंग दैट somebody had an objection, who had an objection? Did Penguin have an objection? Are Penguin even the publisher or did somebody else have an objection? Congress now seems to think that there is government pressure, to be put
3: no,
0: it very
3: I mean, look Padma, why would the government want to even be put any obstacle to the publishing of an autobiography by anybody? It would also then assume that the government knows what's there in the manuscript. That's not true. I don't quite buy into this thing of RSS, Prime Minister, China. Going by the descriptions of the book which have come out, especially from North, it is a very intense personal biography, a memoir, and it is about her life and her life's journey. So if there are aspects over there that require fact-checking, which is what Penguin has said, it would have to do with important milestones in the political history of India. So it could be something to do with the emergency, her role in it or non-role in it, or Rajiv's role or non-role. It could be about her sister-in-law's exit from the family house, what led to the exit. It could be about the assassination of Indira Gandhi, where was she, whatever, etc. It could be about R.K. Dhawan, we know that he ultimately became very controversial. It could be any number of things. But to say that it's about China, I don't think so. Or that there could very well be, I have no personal knowledge,

0: But I can't quite imagine a person like Sonia Gandhi writing a personal memoir of her life's journey in India to have a separate chapter on China or a separate chapter on RSS.
1: Mm.
0: That logically doesn't hold good.
1: No, what if she has said, I spoke to mummy, because apparently that's what she used to call Indira Gandhi, that I spoke to mummy and mummy said that this thing about RSS.
0: Mummy was very fond of the RSS.
1: Maybe that's why Penguin wants it fact checked.
0: Mummy was very fond of the RSS. Mummy was very fond of the VHP. And at that time, the VHP was politics agnostic, in the sense Congress, BJP, etc.
1: Hmm.
0: So I can't imagine, I mean, mommy went and inaugurated the Ganga Yatra along with the Nepal Naresh.
1: Hmm.
0: It was a VHP Yatra. So I can't imagine, if I had been, I mean, I'm just trying to put myself in her place. There would have been so many things which are riveting to be said. Then something about China, land, RSS, PM.
1: What would you hope to hear from this autobiography?
0: A lot. I mean,
1: like?
0: What was it that triggered her to, fall for Rajiv Gandhi? We haven't heard her version.
1: Mm.
0: We haven't heard Rajiv's version either. We have all heard second-hand, third-hand versions. We have heard Khushwant Singh's version, but not her version. What did she think about India after coming here? Why didn't she give up her Italian citizenship immediately? Why did she wait? What was her role in the Maruti enterprise? Why did she play that kind of a role?
1: Okay.
0: Why didn't she stop Manika Gandhi from leaving the family home?
1: Okay, I think Baba was...
2: Maybe why she did not become Prime Minister.
0: Or why she didn't... When she had the chance to become PM, why did she play the role of a renunciate?
1: Why did she listen to the call of her conscience? I think Baba wants to also come in, but I want to play out for you what the Congress and BJP are saying about this. Let's quickly listen in.
3: Then BJP attacking mode, mein, BJP ka kya isse lena dena? कोई बुक अगर लिख रहा हो सोनिया जी अगर लिखी हैं तो अपनी भावना ही उसमें लिखेंगी जिंदगी का जो उनका कहानी होगा उसी के बारे में लिखेंगी ना कोई प्रकाशक को मना करना चाहिए ना और ये लोग हो सकता है बीजेपी के दबाव में पेंगुइन हो जैसा नरावने वाले केस में हुआ हो तो इस वजह से भी हो सकता है उन लोगों ने मना किया हो
4: वेल इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बोइंग डाउन इट्स अ मैटर ऑफ शेम ग्रेट शेम That even in writing a book, of course it is being written by someone else, you are not placing the facts and figures, and that's why the publishers are not ready to publish it. Because the verification has to be done, the credibility has to be maintained of the publisher. So sad.
1: Sabhi ji, aapne dekha hai statement Penguin ka, ki ab kya kuch confusion hai, pressure hai, kya hai?
5: देखिए मुझे लगता है कि जिस तीन बातों का जिक्र हो रहा है कि चाइना के इशू को लेकर आरएसएस के इशू को लेकर और प्रधानमंत्री के मामले को लेकर तीन चैप्टर हैं जिस पे पब्लिशर को शायद आपत्ति रही होगी देखिए अगर चाइना का इशू है तो उस पर तो सोनिया गांधी की कोई भूमिका नहीं थी उस समय तो वो तो भारत में थी भी नहीं उसका कोई कंसर्न नहीं था उसको किसी भी तरीके से उस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता तो वो सोनिया से कंसर्न नहीं है जहाँ तक बात है आरएसएस की कि आरएसएस का इशू का तो आरएसएस ने भी कभी सोनिया गांधी के खिलाफ किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया
6: लेकिन आरएसएस के खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे
5: सोनिया गांधी बोलती रही लेकिन संघ ने कभी सोनिया गांधी के खिलाफ किसी भी तरह का बयान संघ ने कभी नहीं दिया सोनिया गांधी के खिलाफ इवन राहुल गांधी के खिलाफ बयान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का और संघ का भी कोई ऐसा आपस में कोई मतभेद हुए हो जिसको लेकर सोनिया गांधी को लगता हो कि संघ ने मेरे खिलाफ ये गलत बात प्रचारित की है या मेरे बारे में गलत संघ ने ये कहा है और उसको मैं अपने किताब में अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात को संघ के खिलाफ लेकर आऊँगी कि संघ से मेरी क्या बातचीत हुई थी जो भी हो तो संघ से भी सोनिया का कोई कंसर्न नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के साथ जरूर हो सकता है क्योंकि जब से गुजरात के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसके बाद सोनिया गांधी जब गई थी प्रचार में तो मौत का सौदागर उन्होंने कहा था
1: तो प्रेशर हुआ है कि नहीं हुआ है
5: हुआ होगा नहीं मुझे नहीं लगता कि सरकार प्रेशर करेगी इस बात को लेकर देखिए इतनी किताबें
1: अचानक से मन क्यों बदल गया आपने कवर रिलीज कर दिया, उसके बाद सडनली फैक्ट चेक व्हाट हैज हैपेंड.
5: ये हो सकता है उसमें कि देखो पब्लिशर जब किताब पब्लिश करता है तो पब्लिशर चाहता है कि अगर आप किसी कोई कंट्रोवर्सी बात कह रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या आपके पास, कोई प्रूफ होना चाहिए ना. पब्लिशर की रिस्पांसिबिलिटी है. डिड दे
1: बिफोर हैंड, डिड दे फिगर आउट इन द मैन्युस्क्रिप्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम बिफोर द रिलीज द कवर.
5: नहीं, ऐसा नहीं होता. बड़े पब्लिशर के साथ क्या होता, बड़े व्यक्ति की किताब अगर पब्लिश होगी तो पब्लिशर चाहता है कि इसी किताब को मैं जल्दी पब्लिश करूं और उसने कवर रिलीज कर दिया होगा. हो सकता है कि सोनिया गांधी ने बाद में कुछ और मैटर ऐड करवाया हो कि ये भी ऐड करना है, और पब्लिशर ने कहा हो कि ये ऐड नहीं हो सकता है, और सोनिया ने कहा

0: इंडिपेंडेंट करके।
1: हाँ, नहीं वो पीआईबी फैक्ट चेक टाइप है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी पीछे से प्रमोट कर रही है, कांग्रेस तो यही कह रही है, बीजेपी
0: सब जानते हैं,
1: कांग्रेस यही कह रही है ना कि ये बीजेपी प्रमोट कर रही है, उन्हीं का कोई बंदा है, अब कौन बंदा है ये भी नहीं मालूम लोगों को, लेकिन बीजेपी का काम हो रहा है तो काम हो रहा है। तो
2: टेल मी पद्मज, सपोजिंग बीजेपी इज प्रॉपिंग इट अप और प्रमोटिंग इट और हैज क्रिएटेड दिस साइट, व्हाटएवर, सपोजिंग एनी स्टफ व्हिच इज गोइंग अप ओवर देयर, is it factually incorrect?
0: No, but then the thing is that the BJP should do it frontally, right? Here what? You are saying that there's this young Gen Z girl who is doing it. So you are firing off somebody else's shoulder. If you're doing it, then the BJP is fact-checking.
2: No, that is your presumption that the BJP is doing it. My counter thesis is that even if the BJP is doing it, is it factually incorrect? If it is not, then I think this whole thing which I mentioned a while ago, that public scrutiny has gone up manifold now. You cannot get away, you yourself know, you use social media quite often, and including late at night, and a lot of stuff, how it is contested. The whole thing of community notes, for example.
0: Yeah.
2: One community note and the entire claim falls through.
1: नहीं, इसमें एक बात कहूंगा, किसी भी नेता के भाषण का आप फैक्ट चेक कर लेंगे ना, यही हाल होगा।
0: नहीं,
1: जो हमारे नेता कुछ भी जो भाषण
3: रिटोरिक इज डिफरेंट, बट यू से व्हाई वी आर टॉकिंग दिस, इफ बीजेपी ने अगर बनाया होता तो फिर हम बोलते चलो ये तो पॉलिटिकल स्लग फेस्ट है, तू मैं है, हम इस पर इतनी बात ही नहीं कर रहे होते, न इतना सोशल मीडिया पर इसका ट्रैक्शन हो रहा होता। समबडी हु इज क्लेम्स टू बी फ्रॉम दैट एज ग्रुप ऑफ जेन जी, शी इज रेजिंग दैट क्वेश्चन एंड रेजिंग ऑल दोस पॉइंट जो उन्होंने राहुल गांधी ने इस यूथ की गूंज में अपने बोला है, तो वो साफ सी बात वो कह रहे हैं कि आप इसको कंपेयर कीजिए ना कि आप जो जाके युवाओं में बात कह रहे हैं वो कितनी अथेंटिक है या नहीं है।
0: एंड देन एंड देन ऑन द बैक ऑफ इट कांग्रेस जाकर के FIR कर देती है उस पर, भाई आप तो यू आर सेइंग कि भाई फैक्ट चेक, आपके भी बड़े सारे फैक्ट चेकर हैं जो हर किसी का फैक्ट चेक भी करते हैं, कई बार वो मीडिया पे भी टिप्पणी करते हैं, वो ऑल इन वन ऑस्कर ऑस्कर और पुलित्जर प्राइज के फेवरेट्स भी हो जाते हैं।
1: नहीं तो कांग्रेस का, कांग्रेस का तो कहना है ना कि वो गूंज जो है छात्रों की गूंज से जो है बीजेपी जो है घबरा गई है उसके पे, जो
0: तो FIR क्यों कर रहे हैं भाई बच्ची के ऊपर, आप करने दीजिए, आप काउंटर फैक्ट चेक कर दीजिए, 20 साल की लड़की कर रही है, व्हाई आर यू फाइलिंग एन FIR,
2: व्हाट इज द FIR गोइंग टू अचीव, what is the crime being committed?
0: The crime being committed is misrepresentation of
2: how fact. Is it misrepresentation?
0: So not this fact check, they have said that basically this one social media user gave a certain screenshot and said Rahul Gandhi made this claim and then went and deleted it. So they're saying they misrepresented what Rahul Gandhi said and that is why the FIR has been done. Not on this website itself.
4: Padmaja, agar Congress ko lagta hai aur Rahul Gandhi ko lagta hai ki is site ko attraction nahi milna chahiye, site band hona chahiye, to Rahul Gandhi false information dena band kar de, पूरा सच बोलेंगे तो साइट रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगी ना कि राहुल गांधी ने अगले
3: तो स्पीच में क्या सही बोला क्या बोला। राजनीतिक प्रोग्राम में रैलीज में तो इस तरह के दावे किए जाते
1: हैं,
3: पर अब ये कि आप दावे जो कर रहे हैं आप छात्रों के बीच में कर रहे हैं तो फिर उस पर कोई ना कोई तो प्रश्न उठाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी उठाएगी तो हम ये कहेंगे भाई ये तो तू तू मैं हो रही है, बीजेपी उसका जवाब दे रही, वो भी हो सकता है दावे में कुछ और बातें कह दे। इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि 20 साल का है, जो उसी एज ग्रुप से आता है जिसको राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टारगेट कर रही है, चाहती है अपने पाले में लाए उनको, अगर वो उस पर सवाल उठाते हैं तो उसकी साख ज्यादा आती है,
4: बिल्कुल इसमें
3: उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, इसलिए हम लोग उसको इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं।
0: मोदी मित्र मंडली इज व्हाट रणदीप सुरजेवाला इज कॉलिंग इट, बट स्पीकिंग ऑफ मोदी मित्र मंडली, रिमेंबर द प्राइम मिनिस्टर मंथ अगो, इट्स जस्ट बीन अ मंथ एंड टू डेज, एंड ही हैड बेसिकली आस्क्ड ऑल द मिनिस्टर्स टू अप देयर सोशल मीडिया गेम, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, एंड द रिजल्ट हैज बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो एक्चुअली वी हैड अ टीम मेंबर समर्थ हु एनालाइज्ड what their activity has been like, and let's take a look at what the performance has been like. Amit Shah has had maximum follower growth of 8.53 lakhs, S. Jayashankar has grown by 2.95 lakhs, and C.R. Patil has grown by 2.57 lakhs. But if you see other than individuals who have seen, so you see the maximum follower growth and the minimum follower growth, very interesting. Akhileshji, what do you make of this? Nitin Gadkari ke 26,000 kam ho gaye hain, 26,000 dip has happened E20 इफेक्ट,
3: पिछले कुछ दिनों में काफी कंट्रोवर्सी हुई ना जो E20 को लेकर के बनाया गया, मुझे विवाद लगता है वो भी इसके पीछे कारण हो सकता है। ऊपर से जो कुछ एक्सप्रेसवेज में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं उसको

0: लेकर कभी इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन वैसे गडकरी जी के जो वीडियोस वगैरह है बहुत अच्छा करते हैं, उनकी टीम के लोग हमें बताते हैं कि काफ़ी उससे कमाई भी होती है और उसको डोनेट करते हैं वो।
1: एंड सम पीपल आर इवन सेइंग दैट इज दिस एन इंडिकेशन ऑफ गडकरी जी की मतलब पॉपुलैरिटी भी घट रही है, क्या वो ऑन हिज वे आउट भी हो सकते हैं?
2: वो तो अखिलेश बताएंगे, लेकिन ये बात है कि E20 ने बहुत डैमेज किया है उनको। अब फिर अभी एक ये भी तो बयान आ गया जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब मेरा टाइम हो गया है, मैं
3: क्लैरिफाई
0: नहीं, पर ये आंकड़ा जो है ये मुझे लगता है ना कि ये कोई उसके आधार पे आपको निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। देखिए आप, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके 125,000 फॉलोअर बढ़ गए इस्तीफा देने के बाद।
1: वो आधे कॉकरोच जनता पार्टी के होंगे जो जाके धर्मेंद्र प्रधान को फॉलो करके डीएम कर रहे होंगे। बट क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी हैज बीन सीन। बट नाउ आई वांट टू कम टू अनदर थिंग व्हिच हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। एंड हैप्पी रक्षाबंधन बाय द वे टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। वी हैड टू वेरी डिफरेंट वीडियोज व्हिच वर पुट आउट टुडे। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द प्राइम मिनिस्टर्स वीडियो एंड हाउ ही सेलिब्रेटेड हिज रक्षाबंधन। ऑलराइट, सो वेरी क्विकली, दिस इज द हाईएस्ट एक्टिविटी दैट वी हैड सीन, बट वी विल प्ले आउट नाउ। यस, so this is just to show when the analysis we did, just greater activity does not mean that you are gaining followers. So you had got people who did not post a lot but they gained a lot of followers and vice versa. Now we've come to the prime minister's video. It seems he has made the pivot, Kanchanda, to Gen Alpha. He has skipped Gen Z and has gone straight to Gen Alpha. No,
4: every Rakhi you have Gen Alpha coming in and tying Rakhi on his hand, and they have a ball of a time. But, you know, this is symbolically very rich, and other prime ministers have also done it. Some have done it with security forces, some have done it with children. So there's nothing unique about it, apart from the fact that there is some sort of a chemistry that happens between children and Modi ji.
1: But you know, it's also interesting that we start talking about Gen Z and women only now, because, and we think that this is an outcome of what happened at Jantar Mantar, but the Prime Minister has been doing this for the last 12 years. Raksha Bandhan, he always has women, kids coming.
0: Even when he was Chief Minister, he used to do it.
1: Even as Chief Minister. Yeah, yeah. So it's not like he has suddenly woken up to Gen Z or Gen Alpha. Kids, he's been interacting.
5: Mukhyamantri se pehle bhi jab Sangathan mein Narendra Modi the, Haryana mein, अभी के प्रधानमंत्री उस समय संगठन के प्रचारक थे, हरियाणा में गए थे। मनोहर लाल खट्टर जो अभी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के और अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनके साथ थे, और उसी दिन राखी थी। तो वहां के एक और दातपुर प्रचारक थे, नरेंद्र मोदी दातपुर थे और मनोहर लाल खट्टर, तीनों साथ में थे राखी के दिन। तो मोदी जी ने कहा कि चलो संकेत शिशु मंदिर स्कूल में चलना है राखी मनाने के लिए। तो वो स्कूल गए और स्कूल की छुट्टी थी उस दिन वहां पर। तो मालूम पड़ा कि आज स्कूल तो बंद है, आज छुट्टी है। खट्टा साहब ने कहा कि स्कूल बंद है, सब छुट्टी है। तो उन्होंने कहा काम कीजिए, शाखा प्रमुख को बोलिए कि उस एरियाज के सब बेटे को इकट्ठा करो, अब मैं राखी मनाने वाला हूँ। और फिर मोदी जी वहाँ के शॉप पे गए और वो पार्ले जी की चॉकलेट आती थी छोटी, वो उन्होंने वहाँ से 50 एक पार्ले जी की चॉकलेट ली और फिर वहाँ गए इस मोहल्ले में और बेटियों के साथ उन्होंने वहाँ राखी मनाई। तो वो उस समय से उनका ऐसा है। नागपुर में भी जब नरेंद्र मोदी संघ की बैठक में आते थे, कभी ऐसा राखी है तो वो त्यौहार मनाते थे हमेशा से, और ये उनका पहले से एटीट्यूड रहा है। तो मतलब संगठन में रहते उन्होंने इस तरीके से किया, मुख्यमंत्री रहते जिस तरीके से उन्होंने राखी सेलिब्रेट किया, और अब तो देश के प्रधानमंत्री है, उसके बाद जिस तरीके से कर रहे हैं। आज राहुल गांधी का भी एक आपने देखा होगा,
1: प्रियंका के साथ आएंगे, पर मैं दो फोटोज दिखाना चाहती हूँ पीएम के इंटरेक्शन से। एक हाई फाइव करते हुए, राखी तक तो ठीक था, ये थोड़ा सा तो चेंज हुआ है कंचनदा, दिस हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज। ही इज हाई फाइविंग द किड्स ओवर देयर एंड देयर वाज अ लिटिल गर्ल हु किस्ड हिज चीक आल्सो। रिमेंबर राहुल गांधी वाज किस्ड बाय दिस यंग गर्ल इन छात्रों के
4: बीच। आई कैन शो यू प्रीवियस ईयर्स पिक्चर्स।
1: प्रीवियस ईयर्स आल्सो इज हाई
4: फाइव ऑफ द किड्स किसिंग हिम ऑन हिज चीक, ऑफ लिटिल गर्ल्स विस्परिंग स्टफ इनटू हिज ईयर्स विद दिस साइन। So all that has been done.
1: Okay, so there is no Jantar Mantar effect. All of this Gen Z, Gen Alpha was right there earlier as well. Now let's talk about the Rahul Gandhi video. And actually one picture which a lot of people, you know, the post that came from Rahul Gandhi. So this is the video that he has tweeted. Yes, this picture. Let's go to the other one that he himself has tweeted from his handle. Yeah. So a lot of people are commenting on this, Akhilesh ji. Why is that?
0: इसलिए क्योंकि जो फोटो आया है वो अपनी सिस्टर के साथ उन्होंने दिया, लेकिन राखी बांधते हुए फोटो नहीं आया कि प्रियंका उनके कलाई पर राखी बांध रही हो, ये फोटो नहीं आया। जो वीडियो भी उन्होंने आपने भी दिखाया है वीडियो, उसमें भी कोई राखी बांधने वाला फोटो नहीं, ये वीडियो नहीं है।
1: ये क्या मिस्ट्री है बाबा? ये बार बार जो है, हर बार कोई भी त्यौहार होता है, हमेशा बड़े सारे लोग ट्विटर पे, एक्स पे कहते हैं कि कभी फेस्टिवल मनाते हुए क्यों नहीं आता, वो पूजा की थाल, वो कुमकुम बांधते हुए क्यों नहीं आता? मोदी जी तो यहाँ तक अपनी राखी बंधवा के बैठे हुए हैं, राहुल जी क्यों नहीं बंधवा रहे?
2: नहीं भैया, बस शायद इस प्रोग्राम को देखने के बाद बंधवा रहे, लेकिन इन दोनों का केमिस्ट्री बहुत बहुत ही,
1: अरे प्रोग्राम देख के उनको बंधवाना होता, हर राखी पे 3000 नीचे कॉमेंट्स आती है की राखी क्यों नहीं बंधी है, राखी अभी तक तो नहीं बंधी है।
2: इसमें कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, मतलब कैसे कर सकते हैं?
5: हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार राहुल गांधी सार्वजनिक नहीं मना सकते,
1: क्यों?
5: उनको अपने स्पेसिफिक वोट बैंक को मैसेज देना है जो उनका वोट बैंक है।
1: नहीं बट
4: राहुल गांधी ने नहीं, मुझे नहीं नहीं नहीं फिर उन्होंने
5: ये सिर्फ किया,
4: नहीं नहीं राखी राहुल ने
5: उतारना का है, राखी भाई भाई बहन का वो कभी नहीं करेंगे। क्या दिवाली के समय राहुल गांधी ऐसा त्यौहार मनाते रहते कि आतिशबाजी चला रहे घर में?
2: राखी को लेकर के आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, राखी तो
5: नहीं, नहीं। लेकिन वो ये संदेश देना चाहते ना, वो दिवाली पे लक्ष्मी पूजन नहीं करते हुए घर में दिखेंगे, आतिशबाजी करते, होली के समय वो क्या सब कार्यकर्ताओं के संग होली खेलते हुए दिखेंगे?
2: लक्ष्मी पूजन करना ना करना उसको आप हिंदू धर्म से, मैं भगवान को नहीं करता हूँ, मुझे
5: मान के चलते ना,
2: मुझे आस्था आस्था का
5: वो दिवाली नहीं मनाएंगे,
2: इसका मतलब थोड़ी है कि जो राम मंदिर नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है, मैं भी नहीं गया।
5: राहुल गांधी संदेश देना चाहते ना,
2: ये तो
4: दो तीन साल पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, एंड देन प्रियंका केम टू हिज डिफेंस सेइंग दैट ही इज अ जनेऊधारी ब्राह्मण,
2: वो तो सो यू कैन नॉट, भी दिखाया है शिव का फोटो हाउस में दिखाया, याद है
4: किसी, ही शोड इट इन अ वेरी इनअप्रोप्रिएट मैनर।
1: But you know, speaking of Rakhi, I remember in one election speech, no, just he had second. Shown the no, Rakhi and second. Said, I don't so take off cannot, my Rakhi till it falls off.
4: You cannot claim to be a Janeudhari Brahmin at one point of time, and then at the next point of time, you say that I don't want to bring my religion into public space.
1: Hmm.
4: That doesn't work, you know, that doesn't figure. That so it is obviously something to do with not making a show of Hindu practices or Hindu rituals.
1: Okay, so you think this is very deliberately done, or maybe we're just reading too much into it?
0: Or is it related to the statement earlier, statement about patriarchy? Because some say that, you know, in Raksha Bandhan, when you are tying a Rakhi, so brother is actually assuring sister that he will take care of her.
1: No, but they are celebrating Rakhi, they are greeting people.
4: He could have done it the other way around. Yeah. Priyanka could have tied the Rakhi.
1: That's a good point. And if you look at that video, it's actually quite a sweet video, because there's a little interaction that Priyanka Gandhi does on stage. Do we have the audio in that video where she's speaking about her brother? So there was on stage. There was on stage, and let's quickly listen to what she says.
0: She's tying something.
4: That's a black band.
0: Black band.
1: Yeah. She's tying a black band, yes. And what does she say? Listen in.
6: Iska main dil se dhanyavaad karta hu.
7: If she likes you, then she will do whatever beyond anything that you can ever imagine.
8: Aur mere bade bhai, inhe dekho. Sabse zyada garv tum par hai.
1: Let's talk about another interesting meeting that took place, and this was, I think, by far the most secretive meeting, because suddenly there was this one tweet that came from Mr. Nadda's account, where he basically just said that we have had a meeting with people who protested at Jantar Mantar on the 21st of August. It didn't even mention following the movement that took place at Jantar Mantar on 21 August. Arey, what movement? Cordial discussions were held as per predetermined schedule. When was it predetermined? Shri Harsh Dubey, Shri Ran Bahadur Singh Chauhan, Shri Mrityunjay Pathak, members of the team, in this connection. What? Why is there so much mystery about this, Akhileshji? When was this predetermined? What's going on?
0: See, there's a politics behind it. You must understand. These agitators, they had gone to Lucknow.
1: Hmm. And just by the way, to tell our viewers, you remember Harsh Dubey was first right here on NDTV. Yes. On NDTV, he debuted and then became this anti-reservation star. And after that, at Jantar Mantar, there was this entire protest that took place. The protest that Mr. Nadda is talking about on the 21st of August. So, yes. Now they are engaging with these people.
0: They had first gone to Lucknow. They had a meeting with the Deputy Chief Minister Brijesh Pathak. In that meeting, Mr. Pathak assured them that whatever their issue is, he will take it up with the central leadership, and a senior minister will meet them soon. Just few days back, Mr. Pathak was in Delhi. He had some meetings here, and after that, yesterday we have this tweet saying that Mr. Nadda ji has met all these agitators. The issue is that it does not talk about what the issues were, what discussion took place, and also what assurances were given. So the tweet is completely silent on all these three points. But we have to understand the politics behind it. you first have to see what happened.

0: in the Bakipur by assembly by election, where the BJP's core group, core voters, they actually shifted away from the BJP. The upper caste did not voted for the BJP the way they had voted in the last previous elections.
1: And it's the only Kayas dominated seat in all of Bihar.
0: And also in the UP, if you talk about the Uttar Pradesh Lok Sabha election especially, these UGC guidelines, they were a big issue for the BJP. Now recently in the Supreme Court, the government has told very clearly that the UGC will look into the matter again. So that kind of assurance has been given. So on these two, three issues, the upper caste voters are agitating.
1: Okay.
0: Reservation is, of course, there is, but they are not demanding abolition of reservation. No party can abolish reservation. That's what RSS says.
1: No, but even on creamy layer, when the matter is in Supreme Court, the government made it very clear that we are not thinking of creamy layer. No. Things are going to stay pretty much the way they are.
0: What they are demanding, that it should be audited. It should be audited in the sense that is the actual benefit be given to the deserving.
1: So is the government now going to audit this?
0: I do not think so, because we don't know.
1: So what is this conversation about then?
2: That boy, Harsh.
1: Harsh Dubey.
2: He did give a long bite.
1: In fact, let's play that out. Let's play that out to make things clearer.
3: कुछ बदलाव किए जाएंगे जो कि देश हित में होंगे और जात पात को खत्म कर देश को आगे बढ़ाने के लिए होंगे और देश में जो रिजर्वेशन है जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाए जाएंगे जिसके लिए चर्चा जो है बहुत जल्द शीघ्र जेपी नड्डा जी हमसे मिलेंगे और हम लोगों से इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे मांग पत्र को उनको सौंप दिया गया है.
1: What exactly is the government doing?
2: See, like he explained, nobody is going to demand abolish reservation, even if they want it so. Because that is politically suicidal, nobody will do it. B, there is good rationale behind affirmative action all over the world. So you cannot stand apart and say, I will not adopt affirmative action. There's good rationale behind equity as opposed to equality. So I think the demand essentially which came out from the one day agitation or one day demonstration was that government should take a relook at the economic criteria.
1: Are they going to?
2: Well, the government could very well relook at take a fresh look at the economic criteria.
1: But Samir ji, kya hai ki ye bhi worry hai ki 5 September ko cockroach wapas aane wale hain, matlab cockroach janta party wapas aane wali hai, to itna sara raita na phaile, to at least government wants to engage with them, because this is what they were very upset about, that two ministers went and met with the cockroach janta party, nobody is even coming to talk to us, and they were removed from jantar mantar. To kya ye 5 September ko lekar ke bhi thodi si worry hai in the government?
4: 5 सितंबर को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रही होगी, लेकिन ये जो मामला भी हुआ है जिस तरीके से हर्ष दुबे और उनकी टीम से सरकार बात कर रही है, मुझे लगता है कि 2014 के बाद अगर 12 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखें तो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट यही है, मतलब सरकार के सामने, कि इस मामले में वो कैसे आगे बढ़ेगी. क्योंकि सरकार को पता है कि भाई एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है. आपको याद कीजिए कि जो बिहार चुनाव के समय मोहन भागवत जी ने सिर्फ समीक्षा करने का जिक्र किया था और उसके पे किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उसको इश्यू बनाया था, और जब चुनाव हार गए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ठीकरा मोहन भागवत जी पे फोड़ दिया था. हालांकि मोहन जी वो नहीं कहते, तब भी चुनाव हारने वाले थे, लेकिन ठीकरा फोड़ दिया कि मोहन जी ने समीक्षा का कहा इसलिए हम चुनाव हार गए. तो उसके बाद मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी आज कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, मतलब आप कुछ भी करोगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि विपक्ष इसे इश्यू बनाएगा. और अभी तो यूपी चुनाव आपके सामने है जहाँ इतना बड़ा जाति का है, 2029 बहुत दूर नहीं है.
1: तो करेंगे क्या ये, या सिर्फ बात करते रहेंगे?
4: अभी सिर्फ बात करते रहेंगे. सरकार कोई डिसीजन नहीं लेने वाली, उसके पास सरकार जानती है जो भी डिसीजन लेगी उसके खिलाफ ही बैकफायर होने वाला है.
1: क्योंकि ये तो गोल्डन गूज होगा ऑपोजिशन के लिए.
4: सरकार सिर्फ ये करती रहेगी, बैठक करती रहेगी, बात हो रही है, आगे बातचीत हो रही है, हम चर्चा कर रहे हैं, कैबिनेट में बात करेंगे, पीएम बात कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं. सरकार कहीं नहीं जाने वाली है, सिर्फ बातचीत करती रहेगी सरकार. क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से बढ़ेगी तो सरकार को पता है कि किसी ना किसी से खामियाजा भुगतना है, और सरकार इस पर भी मुझे लगता है वही रहेगी जहाँ भी है.
0: नहीं, मुझे लगता है इसमें जो EWS का जो कैटेगरी बनाई गई है सरकार की ओर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
2: के लिए बनाया
0: वो इस सरकार ने बनाया है. जो इतने लंबे समय से मांग होती थी कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, तो वो इस सरकार ने
1: दिया.
0: उसमें किसी का हक नहीं मारा गया. उसमें आप देखिए कि उसमें जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट किया गया, एक अलग से सीटें बढ़ा करके 10% आरक्षण दिया गया है. उसको क्या ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए क्या कुछ सेफगार्ड्स बनाए जा सकते हैं? मुझे लगता है इस पर आगे इनसे चर्चा हो सकती है. ज़्यादा इफेक्टिव आप बनाए.
1: बिकॉज़ फॉर द ऑपोजिशन दिस विल बी
4: रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के बाद भी सार्वजनिक नहीं कर रही सरकार. इसी सरकार ने की थी ना रोहिणी आयोग को. जब सरकार ने उसको राष्ट्रपति को दे दिया तो सार्वजनिक करे. तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार जानती है इस बात को कि भाई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आएगी तो क्या होने वाला
1: है? ये उसी तरीके का सेंसस था ना जो कर्नाटका सरकार ने कराया था, एंड दे केप्ट सिटिंग ऑन इट फॉर इयर्स ऑल टुगेदर बिकॉज़ दे नो दैट फॉर अखिलेश यादव दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
5: और वो तो चाह रहे होंगे अखिलेश यादव
1: ऐसे पीडीए का पंडित जी कर दिया
5: है, वो तो चाह रहे होंगे कि आइए यहां पे
2: पद्मा। आई एग्री विद व्हाट ही सेज, प्राइम मिनिस्टर कैन वेरी वेल स्टैंड अप एंड से दैट इट इज आई हु ब्रॉट अबाउट दिस इकोनॉमिक
1: weaker section,
2: economically weaker section criteria. And I think that after so many years of experience, we need to rejig it in a certain manner. Yeah. Without touching the SC quota, the ST quota, the OBC quota, some places you have got the women's quota, some places you have got disabled quota. I am not touching any of them. They remain as they are. I will in fact firewall them further. But the EWS thing, we are planning to rejig it, or we are going to rejig it, and we are going to firewall it in a manner that there will be no sort of intrusion into this 10%, or maybe they will increase it from 10% to 12% or whatever. So there are various options.
1: Okay, interesting insight. That's an interesting insight. I want to now go to something that is happening in Maharashtra, but आपनी बात पूरी करना चाहते हैं।
5: मैं ये इस पे तो बात करनी जरूरी है क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ, समझ गए ना? तो आपको वो समझ, और ये एक चीज और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूँ कि आरक्षण को लेकर के जो क्रीमी लेयर को लेकर बहुत ही मिसकंसेप्शन है। लोग समझता है कि आप ओबीसी हैं तो सबको आरक्षण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। द मोमेंट आप वो इनकम टैक्स पे करते हैं ना, आप उस परिधि से आउट हैं, आपको नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। जो भी सरकारी नौकरी में है, जो भी अच्छी सैलरी है, जो भी इनकम टैक्स देता है, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा क्योंकि आप क्रीमी लेयर से ऊपर चले गए। उन्हीं लोगों को मिलता है जो खेती करते हैं और जो अपना इनकम शो नहीं करते हैं। तो बड़े बड़े जमींदार जो गांव में आप बचे नहीं, वो जो केवल खेती पर ही अपना इनकम दिखाते हैं, उनके बच्चों को मिलता है। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है आरक्षण को लेकर के। फिर आरक्षण पे बात करनी है तो आइए डिबेट करते हैं ना, मंडल कमीशन हमने झेला हुआ है।
0: इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, जो बात मनोरंजन कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये जो कट ऑफ की आप लिमिट है, आप इसको देखिए, अगर क्लोजली एग्जामिन करेंगे
5: इसको
0: तो आप ये पाएंगे कि जो ओबीसी का आरक्षण आप दे रहे हैं, वो जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ के बराबर बराबर आता जा रहा है। तो एक तरह से जो आरक्षण अभी चल रहा है वो धीरे धीरे करके इरिलेवेंट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ को अगर आप एक तरह से देख लें कि सब मिल रहा है, कि ओबीसी में भी वही कट ऑफ है, जनरल का भी वही कट ऑफ है, तो फिर तो आरक्षण की जरूरत क्या
2: पड़ेगी? It is socially and educationally backward. Yes. Now, as the educational levels keep on going up, and it is happening, that's normal evolutionary process, the competition level is also going to go up. And the point which he is making, that the cutoff marks for the general category and the cutoff marks for the OBC are going to match up. And I think very soon we'll see this happening even for the SC and the ST categories.
1: But at least this message needs to go out very clearly, because disaffection is very, very high, and already when you've got some protests happening, for this to come on top of that is going to be quite difficult for the government. But one big relief that they got was in Maharashtra, which is what I want to go to next. So, you know, in the middle of this entire language controversy, you had the Shiv Sena minister there, Pratap Sarnaik, who said that all auto drivers, taxi drivers need to learn Marathi within a span of 3 months, otherwise their licenses will be cancelled. And then large scale protests obviously started. Now what happened yesterday was that Devendra Fadnavis stepped in and he announced that 1 year period is going to be given. Now, ये तो यूपी चुनाव को लेकर ही हुआ ना, वो हिंदी भाषी मारे। The funny thing was, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हमेशा traditionally MNS की पिच थी, उस पे आके शिवसेना क्यों खेलने लगे? ये क्या शिवसेना देवेंद्र फडणवीस को एम्बैरेस करने की कोशिश कर रही थी?
4: देखिए, इसमें शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, वो भी तो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, और वही उसी संस्कारों से निकले, उसी राजनीति से वो निकले। और एकनाथ शिंदे को तो बंबई की राजनीति करना है ना, एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की भी राजनीति नहीं करना है। बंबई बीएमसी में कब्जा चाहिए, बंबई की लोकसभा सीटें चाहिए, बंबई की विधानसभा सीटें।
1: पर बीजेपी को तो यूपी में भी चुनाव लड़ना है ना, आप बीजेपी को क्यों अजीब स्थिति में डाल रहे हैं?
4: तो एकनाथ शिंदे थोड़ी ठेका ले रखा है कि बीजेपी की राजनीति को मैं देखूंगा।
1: अरे, पर आप बीजेपी के साथ सरकार में है ना।
4: नहीं, उसको तो अपनी राजनीति देखना है भाई कि मैं अगर रहूंगा तो सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, मैं अगर महाराष्ट्र में बंबई में बना रहूंगा तो मैं बीएमसी में अपना कमिश्नर मेयर बना पाऊंगा, मैं अगर बंबई में रहूंगा तो मैं कल मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। उस एकनाथ शिंदे का वोट बैंक तो मुंबई का है, कोई नागपुर का और विदर्भ का या मराठवाड़ा का या पश्चिम महाराष्ट्र में थोड़ी है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के जो मंत्री ने कहा उसी समय देवेंद्र फडणवीस को ये कह देना था कि भाई इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है, इसको एक साल का आप समय दीजिए। लेकिन जब इस मामले को जब उद्धव ठाकरे ने उठाया, इस मांग मुद्दे को जब राज ठाकरे ने उठाया,
1: अखिलेश यादव ने उठाया,
4: बाद में उठाया
1: अखिलेश यादव के लिए तो एकदम मतलब फुल टॉस था ये कि भाई अभी हिंदी भाषियों को वहां पर उनके लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं।
4: जनता पार्टी का बड़ा वोटर तो उत्तर भारतीय है ना, महाराष्ट्र के अंदर, तो देवेंद्र फडणवीस को लगा होगा और ये मैसेज गया होगा सेंटर से कि भाई अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अब अभी उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, और अगर इस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में होगी तो उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ने एक साल का समय लिया, लेकिन ये ऐसे एक साल का समय देने से मामला सुलझेगा नहीं। वहां तो सारे नेता शिवसेना के स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, देवेंद्र फडणवीस से कहने से मतलब नहीं कि उनको एक साल का समय मिल गया है। जिस तरीके से राज ठाकरे के बेटे का अमित का बयान आया, आदित्य ठाकरे का बयान आया जिस तरीके से, और उन्होंने कहा कि भाई हम 7 दिन का समय दे रहे हैं, हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, हमारे क्लास में 2 घंटे पढ़ने आई है, हम आपको मराठी सिखाएंगे, वो मराठी नहीं सीखोगे तो फिर अपने हिसाब से अपनी भाषा में आपको सिखाएंगे। तो अब वो क्लासेस शुरू करेंगे तो क्या उनको रोका जाएगा? अब एकनाथ शिंदे की समस्या ये है कि अगर एकनाथ शिंदे उनका विरोध करेंगे तो उनके ऊपर एक आ जाएगी मराठी विरोधी है ये, उत्तर भारतीय का पक्ष ले रहे हैं, तो उनको अपना वोटर भी देखना है, सरकार में भी बने रहना है।
1: तो बाय द वे कि अभी तो अमित ठाकरे का भी तो एक बयान था ना, जहां पे वो अमित ठाकरे जहां वो मराठी में स्पीच देनी थी पर उनको वो दे नहीं पाए थे, वो भी तो उनका खुद का था। तो आप आयरॉनिकली लेट्स क्विकली लिसन टू व्हाट अमित ठाकरे एंड देवेंद्र फडणवीस हैव सेड टुडे एंड वी विल कम बैक।
6: आमच्या निदर्शनात आलं की कोणी हिंदी बोलतंय किंवा उद्धटपणे वागतंय तर आम्ही मारणार। आता यूपी इलेक्शन येत आहे म्हणून हे तुम्ही 1 वर्षाचं एक्सटेन्शन देताय, एवढी कसली डेस्परेशन आलं तुम्हाला?
7: अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में है, कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है, इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: अखिलेश जी, व्हाट इज गोइंग ऑन विद एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस?
0: नहीं देखिए, टसल तो है, ये तो है, इसलिए बीच बीच में आते भी हैं दिल्ली, कई बार बातचीत भी होती है, लेकिन इस गठबंधन के लिए सबसे अच्छी बात यह कि अगले 3 साल तक, 3.5 साल तक कोई चुनाव नहीं है। सारे चुनाव निपट चुके हैं, लोकल बॉडीज हो, असेंबली हो, लोकसभा, सब निपट गए। 2029 तक कुछ नहीं होना, तो आप चाहे अब जो कर रहे हैं आप सिर्फ अपना जो बेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि समीर जी ने कहा सही है, वो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनका जो जनाधार है वो बढ़े, लेकिन जो बात सरने की कंचन सर ने, ये पुराना रूल है, 1989 में रूल बनाया गया था। इसका सिर्फ उद्देश्य यह है कि अगर मान लीजिए आप टैक्सी में बैठ रहे हैं, लोकल लोग अगर बैठ रहे हैं, तो उनसे आप सामान्य मराठी में बातचीत कर सकें। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ टैक्सी वालों के ऊपर ये रूल क्यों ला रहे हैं? आप जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, आप उनके ऊपर ये बात क्यों नहीं कर रहे?
1: अरे बिजनेसमैन पे क्यों नहीं करते? देयर आर सो मेनी हिंदी स्पीकिंग बिजनेसमैन, गुजराती स्पीकिंग बिजनेसमैन इन मुंबई, व्हाई डोंट यू एनफोर्स दिस रूल ऑन देम?
2: एग्जैक्टली, देयर वाज आल्सो अ रूल दैट टू गेट अ ड्राइवर्स लाइक आई मीन टैक्सी ड्राइवर्स परमिट और व्हाटएवर दे हैव ओवर देयर, you have to know the map of Mumbai. It was there and you had to pass that thing to get that permit. So that you couldn't take people for a ride, so that you wouldn't lose your way or whatever. Now I am quite agnostic on language issues, but all I'm saying is that this is not something which came up suddenly like a mushroom.
1: But all I'm commenting is on the politics, because now you've lit the language fire and that gives fertile ground to the parties like MNS. Now what is Amit Thakre saying? That they will have to learn it, otherwise we are going to start our agitation again. How does that help?
2: Shiv Sena, ever since it was formed, has periodically made this thing into a political statement.
1: Correct, but then it had died down. In fact, it was only Raj Thakre, even in the Shiv Sena. I remember there was a railway recruitment exam when he had beaten up the people who had gone to appear. I think 2003-2004. But since then, barring the MNS, nobody really picked up. If you remember before the BMC election, when a bunch of shopkeepers were beaten by the MNS
0: workers, ke liye,
1: even the Shiv Sena hadn't stepped up. But ab aap MNS ki jaise harkat
0: nahi, par MNS ko uska koi political benefit nahi mila,
5: kabhi nahi mila,
0: koi rajnitik fayda usko nahi mila hai uska. Aap utha kar ke chunav ka history dekh lijiye, vidhan sabha chunav mein uska jo performance hai wo hamesha
5: lagatar gira, value hai keval MNS ka,
0: kyunki ye jo shaunism chalta hai na ki aap regional सेंटीमेंट के ऊपर खेल जाएंगे, ये एक लॉन्ग रन में प्ले आपको पे नहीं करता है।
1: जब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है मतलब फिर तो आप सिर्फ बीजेपी को एम्बैरेस ही करने के लिए कर रहे हैं ना,
0: या किसी के इशारे पे कर रहे हैं जो आप जिसका आप जो आप जिक्र करना चाह रही हैं।
1: किसके इशारे? मैं नहीं कह रही, किसके इशारे पर?
4: देखिए कितना इंटरेस्टिंग है।

0: कहा जा रहा है कि भाई इनको काम चलाओ, मराठी आनी चाहिए। आज तक क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कंप्लेंट की कि भाई मैंने कोई एड्रेस बोला था और किसी और एड्रेस पे मुझे लेकर गया? इतनी बेसिक तो उनको समझ में आता है ना कि भाई वो क्या कह रहे हैं, कौन से एड्रेस पे जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब, और वो खुद वहां अगर व्यवसाय करे तो वो इस बात को जानते हैं कि तो मराठी हम बेसिक नहीं समझेंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ऑटो टैक्सी ड्राइवर तो उतनी बेसिक आती है। अब आप उनको फोर्स करो कि आप चार लाइन मराठी में बोलना सिखाओ, आप चार लाइन मराठी में लिखना सिखाओ, वो संभव नहीं है ना।
1: आप उनको विद्वान बनाना चाहते हैं क्या, मराठी के विद्वान?
2: And somebody was telling me that historically now there is data that Marathi families in Mumbai, their new generation is not speaking the language. So rather than worrying about what a taxi driver from Bahraich is speaking, maybe you would be well served to ensure your own kids are learning Marathi and speaking Marathi.
0: Mumbai में ऐसा कोई मराठी नहीं जिसको हिंदी नहीं आती होगी। अगर उसको लगता है कि इस taxi driver को मराठी नहीं समझ रही, वो हिंदी में बता देता है कि इस address पे चल रहा है। तो उसी पर लेके इतना अड़ना मुझे लगता
1: है। मुंबई की अगर हम बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई जो एक मेट्रोपोलिटन सिटी है उसमें केवल महाराष्ट्र के लोग रह रहे हो ऐसा नहीं है, उसमें दूसरे राज्यों से भी लोग आकर के रहते हैं। वो भारत की आर्थिक कैपिटल है, राजधानी है, तो वहां पर सब तरह के लोग आएंगे ही। तो वहां पे आप ये अपेक्षा करें कि किसी को एक ही भाषा जो है उसमें
2: बात करें, वो ज्यादा मोस्ट इट कैन नॉट बी डन थ्रू कोएर्शन और थ्रू थ्रेट्स ऑफ वी आर गोइंग टू कैंसिल योर लाइसेंस। आई वांट टू क्विकली
3: मैं एक लाइन बोलूंगा। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं एनसीपी कवर करता रहा हूं पिछले 30 साल से पवार साहब। मैं चार लाइन सीख गया, काय बंटा साहब टूटे साहब इसका
0: बढ़िया बोल रहे हो आप तो।
3: मैं ये सब सीखा क्योंकि फोन करते थे पहले लैंडलाइन पे, तो जानना होता था साहब कूटे, तो वो बड़ा इंप्रेस होता था।
2: देखिए, यू विल बी सेफ इन मुंबई बाबा, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन मुंबई। स्पीकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट इज हैपनिंग इन पार्लियामेंट? आर वी गोइंग टू सी अ स्पेशल सेशन? बिकॉज नाउ खड़गे जी हैज रिटन अ लेटर एंड ही हैज रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट प्लीज कन्वीन एन ऑल पार्टी मीटिंग ऑन डिलिमिटेशन, ऑल पार्टीज नीड टाइम टू स्टडी द बिल, नीड टाइम बिफोर स्पेशल सेशन। इज दिस द रीजन व्हाई पार्लियामेंट इज नॉट प्रोरोग? तो जल्दी से बता दीजिए अखिलेश जी, क्या हो रहा है? आर वी हैविंग अ स्पेशल सेशन?
1: हां, ऑप्शन ओपन है सरकार के सामने, इसलिए प्रोरोग नहीं किया।
2: बट डू दे हैव द नंबर्स राइट?
1: इसीलिए शायद नहीं बुला रहे ना। जब नंबर के लिए अश्योर हो जाएंगे तब बुला लेंगे। जब उनको लगेगा कि बिल पक्का पास हो जाएगा तो मुझे तक उसमें एक सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे सेशन बुलाने।
3: नंबर नहीं है क्योंकि 22 लोग जो है डीएमके के, उसको जो है कांग्रेस और विजय ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है वहाँ पे तमिलनाडु में कि भाई ये इसको फ्रीज रखिए 25 साल के लिए, स्टेट का भी जितना है उतना ही रखिए 25 साल के लिए, और महिला आरक्षण को लागू कीजिए 2029 से। यही कांग्रेस का भी व्यू है, और यदि जब तक डीएमके नहीं पलटती है तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता है। अब डीएमके बंद गई है, अब वो कैसे होगा? दूसरा जो
2: इधर पलट रहे नहीं पलट रहे,
3: कहाँ पलट रहे? पलट रहे तो हो गया रहता ना,
2: वो चाय पार्टी में गई थी ना।
1: विजय ने भी अपना जो रुख है थोड़ा सॉफ्ट किया, उन्होंने भी बोला कि दक्षिण भारत के जो राज्य है उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कीजिए, तो सरकार ये अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। जो बात गृहमंत्री ने 17 अप्रैल को कही भी थी, उन हाउस में ये कहा था कि हम आप हाउस एक घंटे के लिए एडजर्न कर दीजिए, हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ जाते हैं। सरकार वो अमेंडमेंट लेकर के आ रही है और ये एश्योरेंस दे दिया गया है डीएमके को। अब आप ये देखिए कि दक्षिण भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें डीएमके टीडीपी साथ में है, डीएमके साथ में है, और विजय की पार्टी भी अब जो अपना रुख वो नरम कर चुकी है, तो अब सिर्फ बचती है कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी की भी जो दक्षिण भारत की लॉबी है वो ये चाहती है कि किसी भी सूरत में परिसीमन ना हो पाए। तो चाहे एफसीआरए का बिल हो उसको लेकर के उन्होंने विरोध किया, और अब इस बिल को लेकर भी।
2: सो द मोमेंट आई गेट द नंबर्स देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल सेशन, देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल सेशन। और जहां तक
1: प्रोरोग की बात है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आया है कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब 71 डेज तक उन्होंने पार्लियामेंट को प्रोरोग नहीं किया था सेशन को, क्योंकि तब प्रेसिडेंट जेल सिंह थे और उन्हें ये लग रहा था कि अगर मैंने प्रोरोग कर दिया हाउस को तो तब ये इतने ज्यादा उनके रिश्तों में खटास आ चुकी थी कि ये लग रहा था कि अगर हाउस प्रोरोग किया पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो मुझे डिसमिस कर देंगे और मैं अपने लिए पार्लियामेंट में नहीं जा पाऊंगा।
2: सो लीगली द गवर्नमेंट इज ऑन फर्म ग्राउंड।
3: हां, वो तो सरकार
2: नंबर आएगा स्पेशल सेशन का। एंड खड़गे जी इज आल्सो सेड कि आप 543 ही रखिए नंबर को, डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए।
0: साहब कितनी भी चिट्ठी लिख ले प्रधानमंत्री मोदी को, बिल तो पास होना है और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले पास होना है।
2: डिलिमिटेशन बिल
0: बिल्कुल सरकार तैयारी में है, 5 राज्यों में चुनाव जाने के पहले सरकार ये बिल पास करा लेगी। सरकार उसी रणनीति पर, हो सकता है विशेष सत्र बुला ले अगर बहुमत आ जाए तो, और नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि अभी विंटर सेशन आने वाला है तब तक सरकार सारी व्यवस्था कर लेगी।
1: और ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है वो भी इसलिए रुका हुआ है
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि डीएमके अगर सपोर्ट करती है, अगर डीएमके इंडिया का पार्ट बनती तो क्या डीएमके कैबिनेट का भी हिस्सा बन सकती?
0: शरद पवार,
1: ये भी एक शरद पवार
3: मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ
2: है। तो एक अनार 100 बीमार टाइप का हो गया कि भाई पहले आप बताइए you should get NCPI, you have to get these people from Akali NCP, Akali Dal,
3: but
4: when you add up, everyone matters.
3: Everyone matters.
2: Well, makes life very interesting for us. We have much more to discuss. The more activity you see.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
4: रियली
3: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
4: How?
3: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
4: It's the Mahi way.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to ₹300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: Dr. Roma. मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है।
7: कुछ इससे भी अनोखा
6: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
5: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्थोर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: 3 decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: levels of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones.
2: Hello and welcome to Left, Right and Center. I'm Vishnu Shom. I'm in the Bidur region, fairly upstream. This is the Trishuli River. This was in spate a couple of days back. And the entire area in front of me was completely devastated, as you can see. In just the last little while, we've seen JCB machines and excavators move through. And what they're trying to clear is actually a part of the highway. This is in fact the highway, the primary stretch of road which connects this part of Nepal with areas going right up to the border, the right up to the boundary with China. All of these establishments, homes, they were destroyed, and this access to this area has been shut off completely. But what I'd like to do now is give you an idea of what people saw here. Yahan ye, aapka naam?
3: Ram Raja Yadav.
2: आप एक चीज बताइए, आप थे कहाँ जब ये हुआ था?
3: हमारा रूम इधर इसी घर में था
2: जी। और आपने क्या देखा था, क्या सुना था, आपको पता कैसे चला?
3: नहीं, सब हल्ला हुआ ना इधर, हम नेपाली में बोले।
2: नहीं नहीं, हिंदी में बताइए, आप हिंदी सही बोल रहे हो।
3: अच्छा तो नहीं आता है।
2: नहीं नहीं, एकदम सही बताओ।
3: मैं जब आया था तो सबको थोड़ा नहीं आया, एक ही बार आ गया
2: जी।
3: हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं, एक ही बार आ गया, झांपते चला गया सबको। दो तला तीन तला एक ही बार बाढ़ आया तो धीरे धीरे नहीं आया। हाँ, आदमी जो सब भाग गया भाग गया, इधर भी इसी साइड में तीन चार आदमी इस साइड में चला गया।
2: और यहाँ कोई लोग है जो जिनको आप पहचानते हैं, जिनको नहीं मिला? वो पता नहीं कहाँ है।
3: हाँ, वो मालूम नहीं
2: है अभी तक। ऐसे कोई है आपके, कोई दोस्त?
3: हमारा साथी है
2: जी।
3: साथी है, अभी तो फोन तोन कुछ नहीं लगता है, कल ही करेंगे, नहीं लग रहा है।
2: आप आइए यहाँ, आपका नाम?
4: मेरा नाम श्रवण कुमार यादव।
2: और श्रवण जी, श्रवण जी, आप बताइए, आप कहाँ थे जब ये हुआ?
4: हम थे उस टाइम में ऊपर में थे
2: जी,
4: ये जो है बाजार के पास
2: जी।
4: जब इन्फॉर्मेशन आया तो हम लोग नीचे आए, उसके बाद जो है ये जो है बाजार जो है 5 मिनट के अंदर में क्लियर हुआ है।
2: और आपके कई दोस्त या और कोई लोग
4: यहाँ पर तो जो है हमारा
2: यहाँ
4: पर जो है हमारा जितना दोस्त था सब जो है अभी तक जो अच्छा है, वो लोग जो है निकल गया है। रसुआ में जो है इंजीनियर था एक दोस्त देव कुमार यादव, वो जो है उसका भी अभी तक कुछ नहीं पता है
2: जी। और यहाँ बहुत सारे मकान, बहुत सारे दुकान, ये सब नष्ट हो चुके हैं यहाँ,
4: बहुत चीज हो रहा है यहाँ।
2: और यहाँ पुल जो था, दो पुल थे ना?
4: दो पुल थे,
3: टोटल 19 पुल चला गया है अभी तक।
2: और यहाँ दो पुल?
3: हाँ, यहाँ दो पुल टोटल सब जोड़ेंगे तो 19 19 पुल चला गया है।
2: So that gives you an idea of what people over here saw. Now, very briefly, I'd like to talk about the Trishuli River. The big worry about the flood is that upstream, well north of where I am right now, there is an artificial dam which has been created as a result of all the debris which is actually collected in one area. And that's just on the China side. And the worry is that that was this morning equivalent to approximately, the water was 120 plus Olympic-sized swimming pools, and water continued to be building up over there. So the worry was, as that water level rose, and if there was a breach in that artificial dam, then there would be another flood over here. But that's not happened. What has happened is that the water level has gone up, and that's in fact a sign that water may be flowing over the particular artificial dam, as it were, and therefore the pressure over there may be somewhat less. We can only hope that this remains the case and that there is no further flood over here. But I can also tell you that a team of NDTV journalists and camera persons have been reporting over here for days now. We've been the first teams over here reporting from the worst hit areas. And on this program, I'll continue to bring you their reports and what they've seen.
5: Oh my God, oh my God.
6: The dead bodies actually are being carried away by the river. We are in Chitwan district of Nepal, right at the bank of River Trishuli, the river which actually created havoc in Nepal, killing people in hundreds. And most of the people who died there in Navatola, north of north of Kathmandu. Their dead bodies are actually being fished out here. So it's a few hundred kilometers from where the actual tragedy happened. But this Trishuli River is not a hilly river as when it comes to the plain area. So the dead bodies actually are being carried away by the river.
7: हम यहाँ जो डेड बॉडी मिलेगा उस डेड बॉडी के कलेक्शन करके भेजने के लिए आए हैं, बस यही है अभी।
6: तो अभी तक में पिछले दो चार दिनों में जब से हुआ है घटना कितनी बॉडीज मिल चुकी है आप लोग?
7: यहाँ से तो 150 से ज्यादा ही वो कलेक्शन हुआ है यहाँ।
6: घटना तो यहाँ से बहुत दूर हुआ
7: है, दूर है यहाँ से, बहुत।
6: बॉडीज यहाँ कैसे आ जाएगी? वो
7: बहुत ले आके आते हैं, जो पानी से बगाएगा उसे यही ले आएगा इसे।
6: So we are at the bank of River Narayani here in Chitwan district of Nepal, and this is where the rescue operation is on in full swing. Though this Trishuli River caused disaster in the uphills of Nepal, which is around 2 hours drive from Kathmandu, but the river when it travels down to the plain, it's called Narayani, and when it enters Bihar, the same river is called Gandak. You can see the team of experts, the deep divers, the disaster management team led by senior officials. They're all actually trying to fish out the bodies which might have been carried out from there. Around 170 to 80 bodies have already been fished in last 24 hours. There one dead body has been.
8: Yes, we have got the information, and we are planning to recover that dead body.
6: These jawans, they are using rubber tubes to cross over the river. They are going there to dig out the body because of the silt. The body actually is half buried inside the silt. So dig out the body, and then this body will be brought out here. You can see the stretcher over there. So that stretcher will be used to bring the body to this side of the sewer, and then it will be taken to the hospital. Right now in the Udyog Sangh building of Chitwan, and this hall you can see is filled with relatives of those who have lost their loved ones in this tragic incident which has struck Nepal. Now the local administration, what they have done is they have clicked the picture of the dead bodies which have been being displayed here on the screen. Aap logo ke koi rishtedar yahan pe?
9: Haan, rishtedar hai.
10: Kaun
9: gaya? Behan hai.
10: हाँ,
9: नहीं नहीं मिले हैं, पहचान नहीं है, लाशें नहीं पहचानना है।
10: ये सब दिखाने से कोई पहचान में नहीं आएगा, मेरे को लगता है ये सब ये फालतू की चीज़ें, ऐसे थोड़ी ना पहचान में आएगा। इतना देर से पानी से आदमी फूला हुआ है, कैसे पहचान में आएगा?
6: जो ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं वो फूल गए हैं, और वो ऐसे शेप में आ गए कि जिसे आप पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उनके जो परिजन हैं वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं उन बॉडीज़ को। तो यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे बॉडीज़ को मॉर्चरी है, वहाँ रखा गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे उस बोन बॉडीज़ का पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, और उसके बाद लोग वहाँ से पहचानने के लिए, अगर जो पहचान ले रहे हैं तो फिर वो वहाँ जा रहे हैं, उन्हें बॉडी हैंडओवर कर दिया जा रहा है। चितवन से मैं प्रभाकर कुमार, NDTV।
11: We are at Trishuli Bazaar, and the air surveillance is constantly on around this area to alert the locals who have survived the flash floods and are still living in this area. So they have been now advised to leave this place so that they are not affected with the new flooding alerts which have been released by China. And well, we have been told this is the way, if the water level increases, this is the way the water from China will come down. While the locals here are still struggling to locate the near and dear ones, their family members, their friends, and also waiting for the rescue and rehab to start here. The debris still have to be removed. You can see the devastation and the destruction which the flash floods have caused 3 days back. Now with this new alert of flooding from China has put up a new challenge in front of the locals and also the authorities here, whose priority right now was to get people out of the crisis. Announcement हुआ था बाढ़ के?
12: सुना आया था।
11: क्या बोला था?
12: बारिश है,
13: बारिश आ रहा है, ऐसा बोला है।
14: अभी थोड़ा बंद करके आता है, क्योंकि वो लोग बोल रहा था, मैसेज में भी था वो, अभी 1 से 3 तक बार फिर आएगा वो, ऐसे बोल रहा था वो लोग।
11: आपके आसपास के पड़ोसी सब चले गए ऊपर, तो अभी आप क्यों नहीं जा रहे हो?
15: सब चले, बट बूढ़ा था, बूढ़ा छोड़ ना सकते ना। अब
11: मरे पति यहाँ पे हैं, बीमार है,
15: बीमार हो ना, हिड़न सकते ना।

0: rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
2: In France.
1: In Italy.
2: At Srinagar.
1: I am Mr.
2: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the
5: Welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on every big story, anything that you want to know when it really matters, the buck stops here. You know that NDTV and we love politics. So we've decided that every Friday we are going to go through the biggest political stories, which are the talking points across the country, and hash it out on what really is happening. Which way is the politics in our country doing? The response from all of you last Friday was excellent. Thank you very much for watching. So today again, we've got an excellent panel here with us. Managing editors of NDTV, Manoranjan Bharti and Akhilesh Sharma, both join us here. We also have senior journalists Kanchan Gupta and Sameer Chogankar joining us. And in keeping with, you know, very federal nature of this show, I think we've got representation from every state as well. Baba from Bihar, Sameerji from Maharashtra. We've got Kanchanda from Bengal and
6: Madhya Pradesh.
5: How much better could it get? And I represent Uttarakhand over here. So without further ado, let's get straight into it. And we are talking about Sonia Gandhi's upcoming autobiography. Now, there was obviously a lot of buzz when it was announced. And today, we had the Indian Express telling us that the publisher has backed out. What has the Indian Express said? They said that Penguin Random House, expected to publish Belonging, A Journey of Love, has decided to not do so anymore. Sources said that this is precipitated by certain editorial changes and deletions, and that Penguin Random House India wanted a part of the manuscript to be fact-checked and make some changes and deletions. Now, Penguin came back with a statement, but let me get started straight up with Baba. What are the changes that Penguin... Pehli baat to Penguin kya abhi chhaap rahi hai, nahi chhaap rahi hai. So let me quickly tell you also what Penguin's statement says, because they said Penguin Random House India is not the publisher of Belonging in India. As a publisher, it is both our prerogative and our responsibility to fact-check and provide authors with recommendations that are in the best interests of their books. So, a little bit of a word salad. Are they the publisher or are they not the publisher? What are the changes? Pehle ye bataiye, Baba.
7: Dekhe, pehle toh hamein bataya gaya tha, jab ye kitab ki jab charcha hui, toh ye kaha gaya ki ye bahut hi personal nature ka kitab hai. Isme Sonia Gandhi ne Rajiv Gandhi se jo mulaqat hui, apne jeevan ke bare mein, un sab cheezon ke bare mein bahut vistar se likha hai. Lekin jab ye baat aaj aayi hai, iske baad jo shuru mein toh एज यूजल पता करने की कोशिश की तो सबने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि बाबा हम तो नहीं मालूम है, हमारा उतना है नहीं. अहमद भाई थे तो पता चलता था, अहमद भाई है नहीं तो अब अंदर की बात. तो ये बात सही भी है कि 10 जनपद में शायद उतना आजकल के जो नेता हैं उनका उतना आना जाना शायद नहीं है, या इतना विश्वास सोनिया गांधी का वो नहीं जीत पाए. लेकिन ये बात पता चली है, और पता नहीं मैं कितना सही हूँ, लेकिन जो बात कांग्रेस के 4-5 नेताओं से बातचीत करने पर पता चली है, 3 चैप्टर को लेकर के एतराज है. उसमें एक चैप्टर चाइना को लेकर के है, चाइना को लेकर के है कि उसमें ये कहा शायद लिखा गया है कि चीन जो है हमारी ज़मीन पर कब्जा करता रहा और सरकार किस तरह से देखती रही, इस पर एक चैप्टर है। एक चैप्टर संघ के ऊपर है, संघ के ऊपर आपको मालूम है कि कांग्रेस राहुल गांधी सब रहते हैं कि संघ ने किस तरह से संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और एक चैप्टर प्रधानमंत्री पर है।
5: ओके,
7: इससे आगे मैं न जानता हूँ न नहीं मैं बता पाने।
5: तो
7: अब आप सब सोच लीजिए अपने अपने दिमाग में, अखिलेश कुछ ज्यादा ऐड कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री
5: बताइए। अखिलेश, एनीथिंग इन पर्टिकुलर?
3: जो मैंने सुना है, देखिए जितना मनोरंजन ने बताया वो तो अपनी जगह पर है। जो प्रधानमंत्री के बारे में चैप्टर है उसमें ये बातें कही गई कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी, तो उस मुलाकात में उनकी जो बातचीत हुई है उसका विवरण उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन अपने इस किताब में दिया।
5: उनकी मुलाकात तो बहुत बार हुई होगी, कौन सी वाली मुलाकात?
3: लगता है कि कोई ऐसी मुलाकात हुई इसमें कि दोनों आमने सामने थे, दोनों ही थे, इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। तो ये 1-to-1 बातचीत उनकी हुई, कुछ इस तरह की बात हुई जिसमें कि उन्होंने अपनी पुरानी जो बातें थी, पुराने जो पीएम मोदी के बयान थे उनके बारे में शायद उनका जिक्र किया पीएम मोदी से, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते, जब किताब आएगी, जब आती है, जिस फॉर्म में आती है उसको पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा, लेकिन शायद उस कन्वर्सेशन का जिक्र उन्होंने किया, ये एक इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं चाइना वाली बात, क्योंकि आप जानती हैं कि पिछले सेशन में जो बजट सेशन हुआ था फरवरी में, उसमें पूर्व जो सेना प्रमुख थे नरवणे, उनकी किताब को लेकर के तथा कथित किताब, क्योंकि किताब पब्लिश नहीं हुई थी, पब्लिशर ने भी कहा कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, खुद उन्होंने भी कहा, नरवणे ने भी, कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई। लेकिन जो राहुल गांधी ने जिस तरह से उसको बड़ा मुद्दा बनाया था, मुझे लगता है कि एक बार फिर से उसी तरफ बातें जा रही होंगी, ये भी एक मुद्दा होगा।
5: सो व्हेन यू सेइंग दैट somebody had an objection, who had an objection? Did Penguin have an objection? Are Penguin even the publisher, or did somebody else have an objection? Congress now seems to think that there is government pressure, to be put
8: no,
5: it very
8: I mean, look Padma, why would the government want to even be put any obstacle to the publishing of an autobiography by anybody? It would also then assume that the government knows what's there in the manuscript. That's not true. I don't quite buy into this thing of RSS, Prime Minister, China. Going by the descriptions of the book which have been which have come out, especially from North, it is a very intense personal biography, a memoir, and it is about her life and her life's journey. So if there are aspects over there that require fact checking, which is what Penguin has said, it would have to do with important milestones in the political history of India. So it could be something to do with the emergency, her role in it or non-role in it, or Rajiv's role or non-role. It could be about her sister-in-law's exit from the family house, what led to the exit. It could be about the assassination of Indira Gandhi, where was she, whatever, etc. It could be about R.K. Dhawan, we know that he ultimately became very controversial. It could be any number of things. But to say that it's about China, I don't think so. Or that there would be there could very well be, I have no personal knowledge. But I can't quite imagine a person like Sonia Gandhi writing a personal memoir of her life's journey in India to have a separate chapter on China or a separate chapter on RSS. That logically doesn't hold good.
5: No, what if she has said, I spoke to mummy, because apparently that's what she used to call Indira Gandhi, that I spoke to mummy and mummy said that this thing about RSS.
8: Mummy was very fond of the RSS.
5: Maybe that's why Penguin wants it fact checked.
8: Mummy was very fond of the RSS. Mummy was very fond of the VHP. And at that time, the VHP was politics agnostic, in the sense Congress, BJP, etc. So I can't imagine, Mummy went and inaugurated the Ganga Yatra along with the Nepal Naresh. It was a VHP yatra. So I can't imagine. See, if I had been, I mean, I'm just trying to put myself in her place. There would have been so many things which are riveting to be said. Then something about China, land, RSS, PM.
5: What would you hope to hear from this autobiography?
8: A lot. I mean,
5: like?
8: What was it that triggered her to, you know, fall for Rajiv Gandhi? We haven't heard her version. We haven't heard Rajiv's version either. We have all heard second-hand, third-hand versions. We have heard Khushwant Singh's version, but not her version. What did she think about India after coming here? Why didn't she give up her Italian citizenship immediately? Why did she wait? What was her role in the Maruti enterprise? Why did she play that kind of a role?
5: Okay.
8: Why didn't she stop Manika Gandhi from leaving the family home?
5: Okay, I think Baba was...
3: Maybe why she did not become Prime Minister.
8: Or why she didn't... When she had the chance to become PM, why did she play the role of a renunciate?
5: Why did she listen to the call of her conscience? I think Baba wants to also come in, but I want to play out for you what the Congress and BJP are saying about this. Let's quickly listen in.
9: नहीं नहीं बीजेपी अटैकिंग मोड में है बीजेपी का क्या इससे लेना देना कोई बुक अगर लिख रहा हो सोनिया जी अगर लिखी हैं तो अपनी भावना ही उसमें लिखेंगी जिंदगी का जो उनका कहानी होगा उसी के बारे में लिखेंगी ना कोई प्रकाशक को मना करना चाहिए नहीं और ये लोग हो सकता है बीजेपी के दबाव में पेंगुइन हो जैसा नरावने वाले केस में हुआ हो तो इस वजह से भी हो सकता है उन लोगों ने मना किया हो
10: Well, it's not a matter of bowing down. It's a matter of shame, great shame. That even in writing a book, of course it is being written by someone else, you are not placing the facts and figures, and that's why the publishers are not ready to publish it. Because the verification has to be done, the credibility has to be maintained of the publisher. So sad.
5: सभी जी आपने देखा है स्टेटमेंट पेंगुइन का कि अब क्या कुछ कंफ्यूजन है प्रेशर है क्या है
11: देखिए मुझे लगता है कि जिस तीन बातों का जिक्र हो रहा है कि चाइना का इशू को लेकर आरएसएस के इशू को लेकर और प्रधानमंत्री के मामले को लेकर तीन चैप्टर हैं जिसपे पब्लिशर को शायद आपत्ति रही होगी देखिए अगर चाइना का इशू है तो उस पर तो सोनिया गांधी को कोई भूमिका नहीं थी उस समय तो वो तो भारत में थी भी नहीं उसका कोई कंसर्न नहीं था उसको किसी भी तरीके से उस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता तो वो सोनिया से कंसर्न नहीं है जहाँ तक बात है आरएसएस की कि आरएसएस का इशू का तो आरएसएस ने भी कभी सोनिया गांधी के खिलाफ किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया
7: लेकिन आरएसएस के खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे
11: सोनिया गांधी बोलती रही लेकिन संघ ने कभी सोनिया गांधी के खिलाफ किसी भी तरह का बयान संघ ने कभी नहीं दिया सोनिया गांधी के खिलाफ इवन राहुल गांधी के खिलाफ बयान नहीं दिया तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का और संघ का भी कोई सा आपस में कोई मतभेद हुए हो जिसको लेकर सोनिया गांधी को लगता हो कि संघ ने मेरे खिलाफ ये गलत बात प्रचारित की है या मेरे बारे में गलत संघ ने ये कहा है और उसको मैं अपने किताब में अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात को संघ के खिलाफ लेकर आऊँगी कि संघ से मेरी क्या बातचीत हुई थी जो भी हो तो संघ से भी सोनिया का कोई कंसर्न नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के साथ जरूर हो सकता है क्योंकि जब से गुजरात के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसके बाद सोनिया गांधी जब गई थी प्रचार में तो मौत का सौदागर उन्होंने कहा था
5: तो प्रेशर हुआ है कि नहीं हुआ है
11: हुआ होगा नहीं मुझे नहीं लगता कि सरकार प्रेशर करेगी इस बात को लेकर देखिए इतनी किताबें
5: तो पेंगुइन अचानक से मन बदल गया आपने कवर रिलीज कर दिया उसके बाद सडनली फैक्ट चेक व्हाट हैज
11: हैपेंड ये हो सकता है उसमें कि देखो पब्लिशर जब किताब पब्लिश करता है तो पब्लिशर चाहता है कि अगर आप किसी कोई कंट्रोवर्सियल बात कह रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना पब्लिशर की रिस्पांसिबिलिटी रीड इट
5: बिफोरहैंड डिड दे फिगर आउट इन द मैन्युस्क्रिप्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम बिफोर द रिलीज द कवर
11: नहीं ऐसा नहीं होता बड़े पब्लिशर के साथ क्या होता है बड़े व्यक्ति की किताब अगर पब्लिश होगी तो पब्लिशर चाहता है कि इसकी किताब को मैं जल्दी पब्लिश करूं और उसने कवर रिलीज कर दिया होगा हो सकता है कि सोनिया गांधी ने बाद में कुछ और मैटर ऐड करवाया हो कि ये भी ऐड करना है और पब्लिशर ने कहा हो कि ये ऐड नहीं हो सकता है और सोनिया ने कहा होगा कि ये बिना पब्लिश हुए मैं किताब पब्लिश नहीं करूंगी तो पब्लिशर ने कदम ये भी हो सकता है कि बाद में कोई कंटेंट दिया हो
5: आफ्टर
8: नो यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉफ इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ विच पेंगुइन रैंडम हाउस इज अ पार्ट द manuscript was sold to Knopf, they are the publishers, and automatically rights devolve to the other companies under the holding company, unless otherwise specified in the contract. So I'm sure it would have come down to Penguin India. Penguin India, in due course, in normal course, would have released the cover and said, we will be doing the India edition or whatever. And then when they read the text, they decide that over here, these are the portions that could be problematic. I'm just going by their statement. I don't know.
5: Okay.
8: Beyond that. Now, it is a very normal thing. No Indian publisher, big or small, would knowingly publish something which is factually incorrect in this day and age when scrutiny is very, very high.
5: Okay, so factually incorrect or
8: something? Then what happens is that the book gets slammed for that one paragraph or one sentence or one word, and sales are impacted. No publisher will do it.
5: Well, actually, many people think that all publicity is good publicity, and even if a book becomes controversial, it increases sales. But I want to move on to the second story now, because again, this is the buzzword now, Jhoot Ki Goonj, this website which came from nowhere, and it essentially what it has done is that the Chhatro Ki Goonj events, it is fact-checking the claims made by that website, and 29 claims have been labeled false and 11 have been labeled misleading. Now, a total of 40 claims made by Rahul Gandhi have been fact-checked there. Nobody really knows, nobody has seen, nobody has spoken to this mysterious 20-year-old young student from IIT Madras who is behind this website. But we did speak to somebody who's a social media user and is commenting on this website. So first, listen in to this young lady called Samantha, then we'll come right back.
12: As if I talk about this website, I don't think so. This is something that is a work of BJP or maybe Modi Mitra Mandali. Because even if there is any connection with BJP, why would they miss any chance to promote BJP and highlight their works, right? They have given a very detailed analysis of whatever has been, you know, told by Rahul Gandhi in the rallies and the topics that he was picking one after another. I don't think so. There is any relation with BJP, because they would have not missed the chance of promoting the works of BJP on the website or maybe comparing it with the specific party.
5: तो कौन है समीर जी, समांथा कौन है, क्या अंदर की खबर कुछ बताइए.
11: देखिए, नहीं मुझे लगता है कि अभी इस बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि मतलब कौन है, लेकिन जो भी क्या अच्छी शुरुआत है, फैक्ट तो सामने आना चाहिए ना, ठीक है. और मुझे लगता है स्पेसिफिकली राहुल गांधी ने जो गूंज कार्यक्रम जो शुरू किया छात्रों से बात करने का,
5: सर ये बीजेपी चला रही है कि नहीं चला रही है? है तो बहुत अच्छा सब कुछ, ऑल वेल, फैक्ट चेक इज ग्रेट.
11: देखिए
5: ये कौन है 20 साल की लड़की जो अचानक से धड़ाधड़ फैक्ट चेक कर रही है?
11: देखिए, सिर्फ बीजेपी पे आरोप लगाने से मुझे लगता है ठीक नहीं है. मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा कि जो एंटी राहुल होगा, एंटी कांग्रेस होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली जो राहुल गांधी ने जो गूंज शुरू किया था युवाओं से बातचीत करने के लिए, और उसी में राहुल गांधी जो स्पीच देते हैं उसी को मतलब डिकोड वो करते हैं कि इसमें राहुल गांधी ने कितना सही बोला, कितना झूठ बोला है. तो मुझे लग रहा है कि एंटी राहुल है. अगर एंटी राहुल है तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि भाई बीजेपी है, लेकिन बीजेपी क्यों? देखिए, ऑफिशियली तो बीजेपी ने कहा नहीं किसके पीछे हमें.
5: नो, बट देयर आर सेवरल पीपल विद इन द बीजेपी हु आर प्रमोटिंग दिस लिंक टू दिस वेबसाइट.
11: भाई, ऐसे कई लिंक को बीजेपी प्रमोट करती है जो बीजेपी से जुड़े भी नहीं है. एंटी कांग्रेस है, एंटी राहुल है, तो बीजेपी प्रमोट करेगी ना
5: उसको? हु इज दिस सोशली अवेयर 20 ईयर ओल्ड फ्रॉम आईआईटी मद्रास, सडनली वाज कम फ्रॉम नोवेयर?
3: सी, द आइडेंटिटी इज नॉट नोन, हु इज शी और हु इज ही, बिकॉज वी डोंट नो दैट. द वेबसाइट ऑल्सो डज नॉट से एनीथिंग, because normally the website is expected to mention who is behind the idea, who is running it, but nothing is mentioned there. But interestingly, whosoever is running it is coming up with the facts. For example, in a meeting, Rahul Gandhi points out to one youth, says that jo aapne kameez pehni hai ye China mein bani hui hai, jo aapne haath mein mobile pakda hai ye China ka bana hua hai. So she is or he, whatever website is saying, they are saying that, you know, it's false claim. Because now India is manufacturing mobile phone, now we are actually exporting it. So to say that the mobile phone is made in China is incorrect. To say that the shirt is made in China is incorrect. Because the shirt is made in India. So all these claims are being mentioned there. For example, Rahul Gandhi says that youths are unemployed. Engineers are unemployed in this country. So now the website says it's a false claim, because mostly the employment generation has been there for the past 12 years. They are giving the facts and figures, and all these facts and figures are being picked up from the government websites.
5: No, which is great. Again, I want to come back. Ki ye kaun si 20 saal ki ladki hai jiska itna time wherewithal hai ki wo ekdam on wo, they're not just fact checking, by the way. If you see their Twitter handle, dhadadhad wo video bhi bana rahe hain.
7: Nahi, wo PIB fact check type
5: edit, edit karke.
7: Haan, nahi, wo PIB fact check type hai. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी पीछे से प्रमोट कर रही है, कांग्रेस तो यही कह रही है, बीजेपी
5: सब जानते हैं,
7: कांग्रेस यही कह रही है ना कि ये बीजेपी प्रमोट कर रही है, उन्हीं का कोई बंदा है, अब कौन बंदा है ये भी नहीं मालूम लोगों को, लेकिन बीजेपी का काम हो रहा है तो काम हो रहा है. तो
8: टेल मी पद्मज, सपोजिंग बीजेपी इज प्रॉपिंग इट अप और प्रमोटिंग इट और हैज क्रिएटेड दिस साइट, व्हाटएवर, सपोजिंग any stuff which is going up over there, is it factually incorrect?
5: No, but then the thing is that the BJP should do it frontally, right? Here what? You are saying that there's this young Gen Z girl who is doing it. So you are firing off somebody else's shoulder. If you're doing it, then the BJP is fact-checking.
8: No, that is your presumption that the BJP is doing it. My counter-thesis is that even if the BJP is doing it, is it factually incorrect? If it is not, then I think this whole thing which I mentioned a while ago, that public scrutiny

0: Money has gone up manifold now. You cannot get away. You yourself know. You use social media quite often, and including late at night, and a lot of stuff. How it is contested? The whole thing of community notes, for example. One community note and the entire claim falls through.
1: नहीं, इसमें एक बात कहूंगा, किसी भी नेता के भाषण का आप फैक्ट चेक कर लेंगे ना, यही हाल होगा.
2: नहीं,
1: जो हमारे नेता कुछ भी जो भाषण
3: रिटोरिक इज डिफरेंट, बट यू से व्हाई वी आर टॉकिंग दिस. इफ बीजेपी ने अगर बनाया होता तो फिर हम बोलते चलो ये तो पॉलिटिकल स्लग फेस्ट है, तू मैं है, हम इस पे इतनी बात ही नहीं कर रहे होते, न इतना सोशल मीडिया पे इसका ट्रैक्शन हो रहा होता. Somebody who is claims to be from that age group of Gen Z, she is raising that question and raising all those points जो उन्होंने राहुल गांधी ने इस यूथ की गूंज में अपने बोला है. तो वो साफ सी बात, वो कह रहे हैं कि आप इसको कंपेयर कीजिए ना कि आप जो जाके युवाओं में बात कह रहे हैं वो कितनी अथेंटिक है या नहीं है.
2: एंड देन एंड देन ऑन द बैक ऑफ इट कांग्रेस जाकर के FIR कर देती है उस पर. भाई आप तो यू आर सेइंग कि भाई फैक्ट चेक, आपके भी बड़े सारे फैक्ट चेकर हैं जो हर किसी का फैक्ट चेक भी करते हैं, कई बार वो मीडिया पे भी टिप्पणी करते हैं, वो ऑल इन वन ऑस्कर ऑस्कर और पुलित्जर प्राइज के फेवरेट्स भी हो जाते हैं.
1: नहीं तो कांग्रेस का, कांग्रेस का तो कहना है ना कि वो गूंज जो है छात्रों की गूंज से जो है बीजेपी जो है घबरा गई है उस पे जो.
2: तो आप FIR क्यों कर रहे हैं भाई बच्ची के ऊपर? आप करने दीजिए, आप काउंटर फैक्ट चेक कर दीजिए. 20 साल की लड़की कर रही है, व्हाई आर यू फाइलिंग FIR?
0: व्हाट इज द FIR गोइंग टू अचीव? What is the crime being committed?
2: The crime being committed is misrepresentation of
0: fact. How is it misrepresentation?
2: So not this fact check. They have said that basically this one social media user gave a certain screenshot and said Rahul Gandhi made this claim and then went and deleted it. So they're saying they misrepresented what Rahul Gandhi said and that is why the FIR has been done. Not on this website itself.
4: अगर कांग्रेस को लगता है और राहुल गांधी को लगता है कि इस साइट को अट्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, साइट बंद होना चाहिए, तो राहुल गांधी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दे, पूरा सच बोलेंगे तो साइट रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगी ना कि राहुल गांधी ने अगले स्पीच में क्या सही बोला क्या बोला.
3: राजनीतिक प्रोग्राम में, रैलीज में तो इस तरह के दावे किए जाते हैं. पर अब ये कि आप दावे जो कर रहे हैं आप छात्रों के बीच में कर रहे हैं तो फिर उस पर कोई ना कोई तो प्रश्न उठाएगा. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी उठाएगी तो हम ये कहेंगे भाई ये तो तू मैं हो रही है, बीजेपी उसका जवाब दे रही, वो भी हो सकता है दावे में कुछ और बातें कह दे. इसलिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि 20 साल का है, जो उसी एज ग्रुप से आता है जिसको राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टारगेट कर रही है, चाहती है कि अपने पाले में लाएं उनको, अगर वो उस पर सवाल उठाते हैं तो उसकी साख ज्यादा आती है, उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है. इसलिए हम लोग उसको इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं.
2: मोदी मित्र मंडली इज व्हाट रणदीप सुरजेवाला इज कॉलिंग इट. बट स्पीकिंग ऑफ मोदी मित्र मंडली, रिमेंबर द प्राइम मिनिस्टर मंथ अगो, इट्स जस्ट बीन अ मंथ एंड टू डेज, एंड ही हैड बेसिकली आस्क्ड ऑल द मिनिस्टर्स टू अप देयर सोशल मीडिया गेम, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, एंड द रिजल्ट हैज बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो एक्चुअली वी हैड अ टीम मेंबर समर्थ हु एनालाइज्ड what their activity has been like. And let's take a look at what the performance has been like. Amit Shah has had maximum follower growth of 8.53 lakhs. S. Jayashankar has grown by 2.95 lakhs. And C.R. Patil has grown by 2.57 lakhs. But if you see other than individuals who have seen, so you see the maximum follower growth and the minimum follower growth. Very interesting. Akhilesh ji, what do you make of this? Nitin Gadkari ke 26,000 kam ho gaye hain, 26,000. Dip has happened. E20 effect.
3: पिछले कुछ दिनों में काफी कंट्रोवर्सी हुई ना, जो E20 को लेकर के बनाया गया, मुझे विवाद लगता है वो भी इसके पीछे कारण हो सकता है. ऊपर से जो कुछ एक्सप्रेसवेज में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं उसको लेकर का भी इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है. लेकिन वैसे गडकरी जी के जो वीडियोस वगैरह है बहुत अच्छा करते हैं, उनकी टीम के लोग हमें बताते हैं कि काफ़ी उससे कमाई भी होती है और उसको डोनेट करते हैं वो.
2: एंड सम पीपल आर इवन सेइंग दैट इज दिस एन इंडिकेशन ऑफ गडकरी जी की मतलब पॉपुलैरिटी भी घट रही है, क्या वो ऑन हिज वे आउट भी हो सकते हैं?
1: वो तो अखिलेश बताएंगे, लेकिन ये बात है कि E20 ने बहुत डैमेज किया है उनको. अब फिर अभी एक ये भी तो बयान आ गया जहाँ पे उन्होंने कहा कि अब मेरा टाइम हो गया है, मैं
0: क्लैरिफाई
1: वही क्लैरिफाई
3: नहीं, पर ये आंकड़ा जो है ये मुझे लगता नहीं कि ये कोई उसके आधार पे आपको निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए. देखिए, आप धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके 1.25 लाख फॉलोअर बढ़ गए इस्तीफा देने के बाद.
2: वो आधे कॉकरोच जनता पार्टी के होंगे जो जाके धर्मेंद्र प्रधान को फॉलो करके डीएम कर रहे होंगे. बट क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी हैज बीन सीन. बट नाउ आई वांट टू कम टू अनदर थिंग व्हिच इज बीन वेरी इंटरेस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. एंड हैप्पी रक्षाबंधन बाय द वे टू ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स. वी हैड टू वेरी डिफरेंट वीडियोज व्हिच वर पुट आउट टुडे. फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द प्राइम मिनिस्टर्स वीडियो एंड हाउ ही सेलिब्रेटेड हिज रक्षाबंधन. ऑलराइट, सो वेरी क्विकली, दिस इज द हाईएस्ट एक्टिविटी दैट वी हैड सीन, बट वील प्ले आउट नाउ. यस, so this is just to show when the analysis we did, just greater activity does not mean that you are gaining followers. So you had got people who did not post a lot, but they gained a lot of followers and vice versa. Now we've come to the Prime Minister's video. It seems he has made the pivot, Kanchanda, to Gen Alpha. He has skipped Gen Z and has gone straight to Gen Alpha.
0: Every Rakhi, you have Gen Alpha coming in and tying Rakhi on his hand, and they have a ball of a time. But, you know, this is symbolically very rich, and other prime ministers have also done it. Some have done it with security forces, some have done it with children. So there's nothing unique about it apart from the fact that there is some sort of a chemistry that happens between children and Modi ji.
2: But you know, it's also interesting that we start talking about Gen Z and women only now, because, and we think that this is an outcome of what happened at Jantar Mantar, but the Prime Minister has been doing this for the last 12 years. Raksha Bandhan, he always has women, kids coming.
3: Even when he was Chief Minister, used to do it.
2: Even as Chief Minister. Yeah. Yeah. So it's not like he has suddenly woken up to Gen Z or Gen Alpha. Kids, he's been interacting.
4: Mukhyamantri se pehle bhi jab Sangathan mein Narendra Modi the, Haryana mein अभी के प्रधानमंत्री उस समय संगठन के प्रचारक थे, हरियाणा में गए थे. मनोहरलाल खट्टर जो अभी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के और अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनके साथ थे. और उसी दिन राखी थी, तो वहां के एक और दातपुर के प्रचारक थे. नरेंद्र मोदी दातपुर थे और मनोहरलाल खट्टर, तीनों साथ में थे राखी के दिन. तो मोदी जी ने कहा कि चलो संकेत शिशु मंदिर स्कूल में चलना है राखी मनाने के लिए. तो वो स्कूल गए और स्कूल की छुट्टी थी उस दिन वहां पर. तो मालूम पड़ा कि आज स्कूल तो बंद है, आज छुट्टी है. खट्टा साहब ने कहा कि स्कूल बंद है, सब छुट्टी है. तो उन्होंने कहा काम कीजिए, शाखा प्रमुख को बोलिए कि उस एरियाज की सब बेटियों को इकट्ठा करो, अब मैं राखी मनाने वाला हूँ. और फिर मोदी जी वहाँ के शॉप पे गए और वो पार्ले जी की चॉकलेट आती थी छोटी, वो उन्होंने वहाँ से 50 एक पार्ले जी की चॉकलेट ली और फिर वहाँ गए मोहल्ले में और बेटियों के साथ उन्होंने वहाँ राखी मनाई. तो वो उस समय से उनका ऐसा है. नागपुर में भी जब नरेंद्र मोदी संघ की बैठक में आते थे तो कभी ऐसा राखी है, तो वो त्यौहार मनाते थे हमेशा से. और ये उनका पहले से एटीट्यूड रहा है. तो मतलब संगठन में रहते उन्होंने इस तरीके से किया, मुख्यमंत्री रहते जिस तरीके से उन्होंने राखी सेलिब्रेट किया, और अब तो देश के प्रधानमंत्री है उसके बाद जिस तरीके से कर रहे हैं. आज राहुल गांधी का भी एक आपने देखा होगा,
2: प्रियंका के साथ आएंगे. पर मैं दो फोटोज दिखाना चाहती हूँ पीएम के इंटरेक्शन से. एक हाई फाइव करते हुए, राखी तक तो ठीक था, ये थोड़ा सा तो चेंज हुआ है कंचनदा. दिस हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज. ही इज हाई फाइविंग द किड्स ओवर देयर एंड देयर वाज अ लिटिल गर्ल हु किस्ड हिज चीक आल्सो. रिमेंबर राहुल गांधी वाज किस्ड बाय दिस यंग गर्ल इन छात्रों की.
0: आई कैन शो यू प्रीवियस इयर्स पिक्चर्स.
2: प्रीवियस इयर्स आल्सो ही इज
0: हाई फाइव ऑफ द किड्स किसिंग हिम ऑन हिज चीक, ऑफ लिटिल गर्ल्स विस्परिंग स्टफ इनटू हिज इयर्स विद दिस साइन. So all that has been done.
2: Okay, so there is no Jantar Mantar effect. All of this Gen Z, Gen Alpha was right there earlier as well. Now let's talk about the Rahul Gandhi video. And actually one picture which a lot of people, you know, the post that came from Rahul Gandhi. So this is the video that he has tweeted. Yes, this picture. Let's go to the other one that he himself has tweeted from his handle. Yeah. So a lot of people are commenting on this, Akhilesh ji. Why is that?
3: इसलिए क्योंकि जो फोटो आया है वो अपनी सिस्टर के साथ उन्होंने दिया, लेकिन राखी बांधते हुए फोटो नहीं आया कि प्रियंका उनके कलाई पर राखी बांध रही हो, ये फोटो नहीं आया. जो वीडियो भी उन्होंने आपने भी दिखाया है वीडियो, उसमें भी कोई राखी बांधने वाला फोटो नहीं, ये वीडियो नहीं है.
2: ये क्या मिस्ट्री है बाबा? ये बार बार जो है, हर बार कोई भी त्यौहार होता है, हमेशा बड़े सारे लोग ट्विटर पे एक्स पे कहते हैं कि कभी फेस्टिवल मनाते हुए क्यों नहीं आता, वो पूजा की थाल, वो कुमकुम बांधते हुए क्यों नहीं आता?
1: पता नहीं,
2: मोदी जी तो यहाँ तक अपनी राखी बंधवा के बैठे हुए हैं, राहुल जी क्यों नहीं बंधवा रहे?
1: नहीं, ये बस शायद इस प्रोग्राम को देखने के बाद बंधवा रहे. लेकिन इन दोनों का केमिस्ट्री बहुत बहुत ही,
2: अरे प्रोग्राम देख के उनको बंधवाना होता. हर राखी पे 3000 नीचे कमेंट्स आती हैं कि राखी क्यों नहीं बंधी है, राखी अभी तक तो नहीं बंधी है.
1: क्या पता साहब,
2: बट क्या इज दिस डिलिबरेट? क्या ये डिलिबरेट है?
1: मैं इसमें कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है. मतलब कैसे कह सकते हैं,
4: हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार राहुल गांधी सार्वजनिक नहीं मना सकते.
2: क्यों?
4: उनको अपने स्पेसिफिक वोट बैंक को मैसेज देना है जो उनका वोट बैंक है.
2: नहीं, बट
0: राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, फिर नहीं, उन्होंने
4: ये सिर्फ किया.
0: नहीं नहीं, राखी राहुल ने
4: उतारना का है, राखी भाई बहन का वो कभी नहीं करेंगे. क्या दिवाली के समय राहुल गांधी ऐसा त्यौहार मनाते थे कि आतिशबाजी चला रहे, घर में
1: राखी को लेकर के आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, राखी तो
4: नहीं, नहीं। लेकिन वो ये संदेश देना चाहते हैं ना, वो दिवाली पे भी लक्ष्मी पूजन नहीं करते हुए घर में देखेंगे, आतिशबाजी करते, होली के समय वो क्या सब कार्यकर्ताओं के संग होली खेलते हुए देखेंगे,
1: लक्ष्मी पूजन करना ना करना उसको आप हिंदू धर्म से, मैं भगवान को नहीं करता हूँ, मुझे मान के चलते ना, मुझे आस्था की बात है,
4: वो दिवाली नहीं मनाएंगे,
1: इसका मतलब थोड़ी है कि जो राम मंदिर नहीं जाएगा वो

0: नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ।
1: राहुल गांधी संदेश देना चाहते ना,
0: ये तो
2: दो तीन साल पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, एंड देन प्रियंका केम टू हिज डिफेंस सेइंग दैट ही इज अ जनेऊधारी ब्राह्मण।
0: वो तो so you cannot, हाउस में भी दिखाया है, शिव का फोटो हाउस में दिखाया जाता है किसी एक
2: दिन। ही शोड इट इन अ वेरी इनअप्रोप्रिएट मैनर।
3: But you know, speaking of Rakhi, I remember in one election speech, he had shown the Rakhi and said, I don't take off my Rakhi till it falls off.
2: You cannot claim to be a Janeudhari Brahmin at one point of time, and then at the next point of time, you say that I don't want to bring my religion into public space. That doesn't work, you know, that doesn't figure. That so it is obviously something to do with not making a show of Hindu practices or Hindu rituals.
3: Okay, so you think this is very deliberately done, or maybe we're just reading too much into it?
1: Or is it related to the statement, earlier statement about patriarchy? Because some say that, you know, in the Raksha Bandhan, when you are tying a Rakhi, so brother is actually assuring sister that he will take care of her.
3: No, but they are celebrating Rakhi. They are greeting people.
2: He could have done it the other way around. Yeah. Priyanka could have tied the Rakhi.
3: That's a good point. And if you look at that video, it's actually quite a sweet video, because there's a little interaction that Priyanka Gandhi does on stage. Do we have the audio in that video where she's speaking about her brother? So there was on stage. That was on stage, and let's quickly listen to what she
1: says.
3: She's
1: tying something.
2: That's a black band.
1: Black band.
3: She's tying a black band, yes. And what does she say? Listen in.
4: Iska main dil se dhanyavaad karta hu.
5: If she likes you, then she will do whatever beyond anything that you can ever imagine.
6: Aur mere bade bhai, inhe dekho. Sabse zyada garv tum par hai.
3: Let's talk about another interesting meeting that took place, and this was, I think, by far the most secretive meeting, because suddenly there was this one tweet that came from Mr. Nadda's account, where he basically just said that we have had a meeting with people who protested at Jantar Mantar on the 21st of August. It didn't even mention following the movement that took place at Jantar Mantar on 21 August. Arey, what movement? Cordial discussions were held as per predetermined schedule. When was it predetermined? Shri Harsh Dubey, Shri Ran Bahadur Singh Chauhan, Shri Mrityunjay Pathak, members of the team, in this connection. What? Why is there so much mystery about this, Akhileshji? When was this predetermined? What's going on?
1: See, there's a politics behind it. You must understand. These agitators, they had gone to Lucknow.
3: And just by the way, to tell our viewers, you remember Harsh Dubey was first right here on NDTV. Yes. On NDTV, he debuted and then became this anti-reservation star. And after that, at Jantar Mantar, there was this entire protest that took place. The protest that Mr. Nadda is talking about on the 21st of August. So, now they are engaging with these people.
1: They had first gone to Lucknow. They had a meeting with the Deputy Chief Minister, Brijesh Pathak. In that meeting, Mr. Pathak assured them that whatever their issue is, he will take it up with the central leadership, and a senior minister will meet them soon. Just few days back, Mr. Pathak was in Delhi. He had some meetings here. And after that, yesterday we have this tweet saying that Mr. Nadda ji has met all these agitators. The issue is that it does not talk about what the issues were, what discussion took place, and also what assurances were given. So the tweet is completely silent on all these three points. But we have to understand the politics behind it. You first have to see what happened in the Bakipur assembly by-election, where the BJP's core group, core voters, they actually shifted away from the BJP. The upper caste did not voted for the BJP the way they had voted in the last previous elections.
3: And it's the only caste-dominated seat in all of Bihar.
1: And also in the UP, if you talk about the Uttar Pradesh Lok Sabha election especially, these UGC guidelines, they were a big issue for the BJP. Now recently in the Supreme Court, the government has told very clearly that the UGC will look into the matter again. So that kind of assurance has been given. So on these two, three issues, the upper caste voters are agitating.
3: Okay.
1: Reservation is, of course, there is, but they are not demanding abolition of reservation. No party can abolish reservation. That's what RSS says.
3: No, but even on creamy layer, when the matter is in Supreme Court, the government made it very clear that we are not thinking of creamy layer. No. Things are going to stay pretty much the way they are.
1: What they are demanding, that it should be audited. It should be audited in the sense that is the actual benefit be given to the deserving.
3: So is the government now going to audit this?
1: I do not think so, because we don't know.
3: So what is this conversation about then?
2: That boy, Harsh.
3: Harsh Dubey.
2: He did give a long bite.
3: In fact, let's play that out. Let's play that out to make things clearer.
7: कुछ बदलाव किए जाएंगे जो कि देश हित में होंगे और जात पात को खत्म कर देश को आगे बढ़ाने के लिए होंगे, और देश में जो रिजर्वेशन है जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए चर्चा जो है बहुत जल्द शीघ्र जेपी नड्डा जी हमसे मिलेंगे और हम लोगों से इस विषय पर चर्चा करेंगे, और हमारे मांग पत्र को उनको सौंप दिया गया है।
3: व्हाट एग्जैक्टली इज द गवर्नमेंट डूइंग?
2: सी, लाइक ही एक्सप्लेन्ड, nobody is going to demand abolish reservation even if they want it, so because that a that is politically suicidal, nobody will do it. B, there is good rationale behind affirmative action all over the world, so you cannot stand apart and say I will not adopt affirmative action. There's good rationale behind equity as opposed to equality. So I think the demand essentially which came out from the one day agitation or one day demonstration was that government should take a relook at the economic criteria.
3: Are they going to?
2: Well, the government could very well relook at take a fresh look at the economic criteria.
3: But Samiji, kya hai ki ye bhi worry hai ki ab 5 September ko cockroach wapas aane wale hai, matlab cockroach janta party wapas aane wali hai, to इतना सारा रायता ना फैले तो एटलीस्ट गवर्नमेंट वांट्स टू एंगेज विद देम, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वर वेरी अपसेट अबाउट, दैट टू मिनिस्टर्स वेंट एंड मेट विद द कॉकरोच जनता पार्टी, नोबडी इज इवन कमिंग टू टॉक टू अस एंड दे वर रिमूव्ड फ्रॉम जंतर मंतर। तो क्या ये 5 सितंबर को लेकर के भी थोड़ी सी वरी है इन द गवर्नमेंट?
8: नहीं, 5 सितंबर को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रही होगी, लेकिन ये जो मामला भी हुआ है जिस तरीके से हर्ष जुबेर उनकी टीम से सरकार बात कर रही है, मुझे लगता है कि 2014 के बाद अगर 12 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखें तो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट यही है, मतलब सरकार के सामने कि इस मामले में वो कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि सरकार को पता है कि भाई एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है। आपको याद कीजिए कि जब बिहार चुनाव के समय मोहन भागवत जी ने सिर्फ समीक्षा करने का जिक्र किया था और उसके पे किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उसको इश्यू बनाया था, और जब चुनाव हार गए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ठीकरा मोहन भागवत जी पे फोड़ दिया था, हालांकि मोहन जी वो नहीं कहते तब भी चुनाव हारने वाले थे, लेकिन ठीकरा फोड़ दिया कि मोहन जी ने समीक्षा का कहा इसलिए हम चुनाव हार गए। तो उसके बाद मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी आज कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, मतलब आप कुछ भी करोगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि विपक्ष इसे इश्यू बनाएगा, और अभी तो यूपी चुनाव आपके सामने है जहाँ इतना बड़ा जाति का है, 2029 बहुत दूर नहीं है,
3: तो करेंगे क्या ये या सिर्फ बात करते
8: रहेंगे? अभी सिर्फ बात करते रहेंगे, सरकार कोई डिसीजन नहीं लेने वाली, उसके पास सरकार जानती है जो भी डिसीजन लेगी उसके खिलाफ ही बैकफायर होने वाला है,
3: क्योंकि ये तो गोल्डन गूज होगा ऑपोजिशन के लिए।
8: सरकार सिर्फ ये करती रहेगी, बैठक करती रहेगी, बात हो रही है, आगे बातचीत हो रही है, हम चर्चा कर रहे हैं, कैबिनेट में बात करेंगे, पीएम बात कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, सरकार कहीं नहीं जाने वाली है, सिर्फ बातचीत करती रहेगी सरकार, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से बढ़ेगी तो सरकार को पता है कि किसी ना किसी से खामियाजा भुगतना है, और सरकार इस पर भी मुझे लगता है वही रहेगी जहां भी है।
1: नहीं, मुझे लगता है इसमें जो EWS का जो कैटेगरी बनाई गई है सरकार की ओर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
2: मोदी जी ने बनाया
1: वो इस सरकार ने बनाया है, इतने लंबे समय से मांग होती थी कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण होना चाहिए, तो वो इस सरकार ने
3: 10% दिया,
1: उसमें किसी का हक नहीं मारा गया, उसमें आप देखिए कि उसमें जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट किया गया, एक अलग से सीटें बढ़ा करके 10% आरक्षण दिया गया है, उसको क्या ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए क्या कुछ सेफगार्ड्स बनाए जा सकते हैं? मुझे लगता है इस पर आगे इनसे चर्चा हो सकती है,
3: इसको
1: ज्यादा इफेक्टिव आप बनाए,
3: बिकॉज़ फॉर द ऑपोजिशन दिस विल बी
8: रिपोर्ट राष्ट्रपति को देने के बाद भी सार्वजनिक नहीं कर रही सरकार, इसी सरकार ने की थी ना रोहिणी आयोग को, जब सरकार ने उसको राष्ट्रपति को दे दिया तो सार्वजनिक करे, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार जानती है इस बात को कि भाई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आएगी तो क्या होने वाला है,
3: ये उसी तरीके का सेंसस था ना जो कर्नाटक सरकार ने कराया था, एंड दे केप्ट सिटिंग ऑन इट फॉर इयर्स ऑल टुगेदर बिकॉज दे नो दैट फॉर अखिलेश यादव दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी,
0: और वो तो चाह रहे होंगे अखिलेश यादव
3: ऐसे ही पीडीए का पंडित जी कर दिया
0: है, वो तो चाह रहे होंगे कि आइए यहां पे
2: पद्मा, आई एग्री विद व्हाट ही सेज, प्राइम मिनिस्टर कैन वेरी वेल स्टैंड अप एंड से दैट इट इज आई हु ब्रॉट अबाउट दिस इकोनॉमिक
3: Weaker section,
2: economically weaker section criteria. And I think that's after so many years of experience, we need to rejig it in a certain manner. Yeah. Without touching the SC quota, the ST quota, the OBC quota, some places you have got the women's quota, some places you have got disabled quota. I'm not touching any of them. They remain as they are. I will in fact firewall them further. But the EWS thing, we are planning to rejig it, or we are going to rejig it, and we are going to firewall it in a manner that there will be no sort of intrusion
3: okay.
2: into this 10%, or maybe they will increase it from 10% to 12% or whatever. So there are various options.
3: Okay. Interesting.

0: इंटरेस्टिंग इनसाइट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग इनसाइट. आई वांट टू नाउ गो टू समथिंग दैट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र, बट अपनी बात पूरी करना चाहते हैं.
1: मैं ये इस पे तो बात करनी जरूरी है क्योंकि मैं वहां से आता हूं, समझ गए ना. तो आपको वो समझ, और ये एक चीज और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आरक्षण को लेकर के जो क्रिमिनलियर को लेकर बहुत ही मिसकंसेप्शन है. लोग समझता है कि आप ओबीसी हैं तो सबको आरक्षण मिल रहा है. नहीं मिल रहा है. द मोमेंट आप वो इनकम टैक्स पे करते हैं ना, आप उस परिधि से आउट हैं. आपको नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा. जो भी सरकारी नौकरी में है, जो भी अच्छी सैलरी है, जो भी इनकम टैक्स देता है, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा क्योंकि आप क्रीमी लेयर से ऊपर चले गए. उन्हीं लोगों को मिलता है जो खेती करते हैं और जो अपना इनकम शो नहीं करते हैं. तो बड़े बड़े जमींदार जो गांव में आप बचे नहीं, जो केवल खेती पर ही अपना इनकम दिखाते हैं, उनके बच्चों को मिलता है. तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है आरक्षण को लेकर के. फिर आरक्षण पे बात करनी है तो आइए डिबेट करते हैं ना. मंडल कमीशन हमने झेला हुआ है.
2: इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ, जो बात मनोरंजन कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये जो कट ऑफ की आप लिमिट है, आप इसको देखिए, अगर क्लोजली एग्जामिन करेंगे
1: इसको बढ़ाइए
2: तो आप ये पाएंगे कि जो ओबीसी का आरक्षण आप दे रहे हैं वो जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ के बराबर बराबर आता जा रहा है. तो एक तरह से जो आरक्षण अभी चल रहा है वो धीरे धीरे करके इरिलेवेंट हो जाएगा. मेरा कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ को अगर आप एक तरह से देख लें कि सब मिल रहा है, कि ओबीसी में भी वही कट ऑफ है, जनरल का भी वही कट ऑफ है, तो फिर तो आरक्षण की जरूरत क्या
3: पड़ेगी. It is socially and educationally backward. Socially and educationally backward. Yes. Now, as the educational levels keep on going up, and it is happening, that's normal evolutionary process, the competition level is also going to go up. And the point which he is making, that the cutoff marks for the general category and the cutoff marks for the OBC are going to match up. And I think very soon we'll see this happening even for the SC and the ST categories.
0: But at least this message needs to go out very clearly, because disaffection is very, very high, and already when you've got some protests happening, for this to come on top of that is going to be quite difficult for the government. But one big relief that they got was in Maharashtra, which is what I want to go to next. So, you know, in the middle of this entire language controversy, you had the Shiv Sena minister there, Pratap Sarnaik, who said that all auto drivers, taxi drivers need to learn Marathi within a span of 3 months, otherwise their licenses will be cancelled. And then large-scale protests obviously started. Now, what happened yesterday was that Devendra Fadnavis stepped in and he announced that 1 year period is going to be given. Now, ये तो यूपी चुनाव को लेकर ही हुआ ना, वो हिंदी भाषी मारे. The funny thing was, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हमेशा traditionally MNS की पिच थी, उस पे आके शिवसेना क्यों खेलने लगे? ये क्या शिवसेना देवेंद्र फडणवीस को एम्बैरेस करने की कोशिश कर रही थी?
4: देखिए, इसमें शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है वो भी तो बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना है. और वही उसी संस्कारों से निकले, उसी राजनीति से वो निकले. और एकनाथ शिंदे को तो बंबई की राजनीति करना है ना. एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की भी राजनीति नहीं करना है. बंबई बीएमसी में कब्जा चाहिए, बंबई की लोकसभा सीटें चाहिए, बंबई की विधानसभा सीटें.
0: बीजेपी को तो यूपी में भी चुनाव लड़ना है ना. आप बीजेपी को क्यों अजीब स्थिति में डाल रहे हैं?
4: तो एकनाथ शिंदे थोड़ी ठेका ले रखा है कि बीजेपी की राजनीति को मैं देखूंगा.
0: अरे पर आप बीजेपी के साथ सरकार में है ना.
4: नहीं, उसको तो अपनी राजनीति देखना है भाई, कि मैं अगर रहूंगा तो सरकार में मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, मैं अगर महाराष्ट्र में बंबई में बना रहूंगा तो मैं बीएमसी में अपना कमिश्नर मेयर बना पाऊंगा, मैं अगर बंबई में रहूंगा तो मैं कल मुख्यमंत्री बन पाऊंगा. उस एकनाथ शिंदे का वोट बैंक तो मुंबई का है, कोई नागपुर का और विदर्भ का या मराठवाड़ा का या पश्चिम महाराष्ट्र में थोड़ी है. तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के जो मंत्री ने कहा, उसी समय देवेंद्र फडणवीस को ये कह देना था कि भाई इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है, इसको एक साल का आप समय दीजिए. लेकिन जब इस मामले को जब उद्धव ठाकरे ने उठाया, इस मांग मुद्दे को जब राज ठाकरे ने उठाया,
0: अखिलेश यादव ने उठाया,
4: अखिलेश ने तो बाद में उठाया.
0: अखिलेश यादव के लिए तो एकदम मतलब फुल टॉस था ये कि भाई अभी हिंदी भाषियों को वहां पर उनके लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं.
4: जनता पार्टी का बड़ा वोटर तो उत्तर भारतीय है ना, महाराष्ट्र के अंदर. तो देवेंद्र फडणवीस को लगा होगा और ये मैसेज गया होगा सेंटर से कि भाई अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अब अभी उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, और अगर इस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में होगी तो उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ने वाला है. तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ने एक साल का समय लिया, लेकिन ये ऐसे एक साल का समय देने से मामला सुलझेगा नहीं. वहां तो सारे नेता शिवसेना के स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं. देवेंद्र फडणवीस से कहने से मतलब नहीं कि उनको एक साल का समय मिल गया है. जिस तरीके से राज ठाकरे के बेटे का अमित का बयान आया, आदित्य ठाकरे का बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हम 7 दिन का समय दे रहे हैं, हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, हमारे क्लास में 2 घंटे पढ़ने आई है, हम आपको मराठी सिखाएंगे. वो मराठी नहीं सीखोगे तो फिर अपने हिसाब से अपनी भाषा में आपको सिखाएंगे. तो अब वो क्लासेस शुरू करेंगे तो क्या उनको रोका जाएगा? अब एकनाथ शिंदे की समस्या ये है कि अगर एकनाथ शिंदे उनका विरोध करेंगे तो उनके ऊपर एक आ जाएगी मराठी विरोधी है ये. उत्तर भारतीयों का पक्ष ले रहे हैं, तो उनको अपना वोटर भी देखना है, सरकार में भी बने रहना है।
0: तो बाय द वे कि अभी तो अमित ठाकरे का भी तो एक बयान था ना, जहाँ पे वो अमित ठाकरे जहाँ वो मराठी में स्पीच देनी थी पर उनको वो दे नहीं पाए थे, वो भी तो उनका खुद का था। तो आप

0: में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए एक साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, एक साल का समय उनको दिया जा रहा है, इस एक साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: अखिलेश जी, व्हाट इज गोइंग ऑन विद एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस?
2: नहीं देखिए, टसल तो है, ये तो है, इसलिए बीच बीच में आते भी हैं दिल्ली, कई बार बातचीत भी होती है, लेकिन इस गठबंधन के लिए सबसे अच्छी बात यह कि अगले तीन साल तक, साढ़े तीन साल तक कोई चुनाव नहीं है। सारे चुनाव निपट चुके हैं, लोकल बॉडीज हो, असेंबली हो, लोकसभा, सब निपट गए। 2029 तक कुछ नहीं होना, तो आप चाहे अब जो कर रहे हैं आप सिर्फ अपना जो बेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि समीर जी ने कहा सही है, वो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनका जो जनाधार है वो बढ़े, लेकिन जो बात सर ने की, कंचन सर ने, ये पुराना रूल है, 1989 में रूल बनाया गया था। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि अगर मान लीजिए आप टैक्सी में बैठ रहे हैं, लोकल लोग अगर बैठ रहे हैं, तो उनसे आप सामान्य मराठी में बातचीत कर सके। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ टैक्सी वालों के ऊपर ये रूल क्यों ला रहे हैं? आप जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं आप उनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे?
1: अरे आप बिजनेसमैन पे क्यों नहीं करते? देयर आर सो मेनी हिंदी स्पीकिंग बिजनेसमैन, गुजराती स्पीकिंग बिजनेसमैन इन मुंबई, व्हाई डोंट यू एनफोर्स दिस रूल ऑन देम?
3: देयर वाज आल्सो अ रूल that to get a driver's like I mean taxi driver's permit or whatever they have over there, you have to know the map of Mumbai. It was there, and you had to pass that thing to get that permit, so that you couldn't take people for a ride, so that you wouldn't lose your way or whatever. Now I'm quite agnostic on language issues, but all I'm saying is that this is not something which came up suddenly like mushroom.
1: But all I'm commenting is on the politics, because now you've lit the language fire and that gives fertile ground to the parties like MNS. Shiva, now what is Amit Thackeray saying? That they will have to learn it, otherwise we are going to start our agitation again. Shiva, how does
3: Sena,
1: that help?
3: Shiv Sena, ever since it was formed, has periodically made this thing into a political statement.
1: Correct, but then it had died down. In fact, it was only Raj Thackeray, even in the Shiv Sena. I remember there was a railway recruitment exam when he had beaten up the people who had gone to appear. I think 2003, 2004. But since then, barring the MNS, nobody really picked up. If you remember, before the BMC election, when a bunch of shopkeepers were beaten by the MNS
2: workers, ke liye,
1: even the Shiv Sena hadn't stepped up. But ab aap MNS ki jaise harkat
2: nahi, par MNS ko uska koi political benefit
4: nahi mila,
2: koi rajnitik fayda usko nahi mila hai uska. Aap utha kar ke chunav ka history dekh lijiye, vidhan sabha chunav mein uska jo performance hai wo hamesha lagata
4: hai value hai keval MNS ka,
2: kyunki ye jo shaunism chalta hai na ki aap regional सेंटीमेंट के ऊपर खेल जाएंगे, ये एक लॉन्ग रन में प्ले आपको पे नहीं करता
1: है। जब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, मतलब फिर तो आप सिर्फ बीजेपी को एम्बैरेस ही करने के लिए कर रहे हैं ना,
2: या किसी के इशारे पे कर रहे हैं जो आप जिसका आप जो आप जिक्र करना चाह रही हैं?
1: किसके इशारे? मैं नहीं कह रही किसके इशारे पर।
5: देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई इनको काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, आज तक क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कंप्लेंट की कि भाई मैंने कोई एड्रेस बोला था और किसी और एड्रेस पे मुझे लेकर गया? इतनी बेसिक तो उनको समझ में आता है ना कि भाई वो क्या कह रहे हैं, कौन से एड्रेस पे जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब। और वो खुद वहां अगर व्यवसाय करे तो वो इस बात को जानते हैं कि जब तक मराठी हम बेसिक नहीं समझेंगे हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ऑटो टैक्सी ड्राइवर तो उतनी बेसिक आती है। अब आप उनको फोर्स करो कि आप चार लाइन मराठी में बोलना सिखाओ, आप चार लाइन मराठी में लिखना सिखाओ, वो संभव नहीं है।
1: मराठी फैमिलीज इन मुंबई, देयर न्यू जनरेशन इज नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज, सो रादर देन वरिंग अबाउट व्हाट अ टैक्सी ड्राइवर फ्रॉम बहराइच इज स्पीकिंग, मे बी यू वुड बी वेल सर्व्ड टू इंश्योर योर ओन किड्स आर लर्निंग मराठी एंड स्पीकिंग मराठी।
5: मुंबई में ऐसा कोई मराठी नहीं जिसको हिंदी नहीं आती होगी, अगर उसको लगता है कि इस टैक्सी ड्राइवर को मराठी नहीं समझ रही, वो हिंदी में बता देता है किस एड्रेस पे चल रहा है।
2: उसी पर मुंबई की अगर हम बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई जो एक मेट्रोपोलिटन सिटी है उसमें केवल महाराष्ट्र के लोग रह रहे हो ऐसा नहीं है, उसमें दूसरे राज्यों से भी लोग आकर के रहते हैं, वो भारत की आर्थिक कैपिटल है, राजधानी है, तो वहां पर सब तरह के लोग आएंगे ही, तो वहां पे आप ये अपेक्षा करेंगे कि किसी को एक ही भाषा जो है उसमें
1: बात करें? मोस्ट इंपोर्टेंटली, कैन नॉट बी डन थ्रू कोअर्शन और थ्रू थ्रेट्स ऑफ वी आर गोइंग टू कैंसिल योर लाइसेंस। आई वांट टू क्विकली,
4: मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैं एनसीपी कवर करता रहा हूं पिछले 30 साल से, पवार साहब, मैं चार लाइन सीख गया, काय बंटा साहब टूटे साहब का
5: बढ़िया बोल रहे हो आप तो,
4: मैं ये सब सीखा क्योंकि फोन करते थे पहले लैंडलाइन पे, तो जानना होता था साहब कूटे, तो वो बड़ा इंप्रेस होता था।
1: देखिए, यू विल बी सेफ इन मुंबई बाबा, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन मुंबई। स्पीकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट इज हैपनिंग इन पार्लियामेंट? आर वी गोइंग टू सी अ स्पेशल सेशन? बिकॉज नाउ खड़गे जी हैज रिटन अ लेटर एंड ही हैज रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट प्लीज कन्वीन एन ऑल पार्टी मीटिंग।

0: on delimitation. All parties need time to study the bill, need time before special session. Is this the reason why Parliament is not prorogued? तो जल्दी से बता दीजिए अखिलेश जी क्या हो रहा है, अभी क्या अभी having a special session?
1: हाँ, option open है सरकार के सामने, इसलिए प्रोरोग नहीं किया
0: गया. But do they have the numbers right now?
1: इसलिए शायद नहीं बुला रहे ना. जब नंबर के लिए अश्योर हो जाएंगे तब बुला लेंगे. जब उनको लगेगा कि बिल पक्का पास हो जाएगा तो मुझे तक उसमें एक सेकंड की भी देरी नहीं करेंगे सेशन बुलाने.
2: नंबर नहीं है क्योंकि 22 लोग जो है डीएमके के उसको जो है कांग्रेस और विजय ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है वहाँ पे तमिलनाडु में कि भाई ये इसको फ्रीज रखिए 25 साल के लिए, स्टेट का भी जितना है उतना ही रखिए 25 साल के लिए, और महिला आरक्षण को लागू कीजिए 2029 से. यही कांग्रेस का भी व्यू है, और यदि जब तक डीएमके नहीं पलटती है तब तक ये बिल पास नहीं हो सकता है. अब डीएमके बन गई है, अब वो कैसे होगा? दूसरा जो
0: इधर पलट रहे नहीं पलट रहे,
2: कहाँ पलट रहे हैं? पलट रहे हैं तो हो गया रहता ना,
0: वो चाय पार्टी में गई थी ना.
1: विजय ने भी अपना जो रुख है थोड़ा सॉफ्ट किया, उन्होंने भी बोला कि दक्षिण भारत के जो राज्य है उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कीजिए, तो सरकार ये अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है. जो बात गृहमंत्री ने 17 अप्रैल को कही भी थी, उन हाउस में कहा था कि हम आप हाउस एक घंटे के लिए एडजर्न कर दीजिए, हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ जाते हैं. सरकार वो अमेंडमेंट लेकर के आ रही है और ये एश्योरेंस दे दिया गया है डीएमके को. अब आप ये देखिए कि दक्षिण भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें डीएमके टीडीपी साथ में है, डीएमके साथ में है, और विजय की पार्टी भी अब जो अपना रुख वो नरम कर चुकी है, तो अब सिर्फ बचती है कांग्रेस पार्टी. जो कांग्रेस पार्टी की भी जो दक्षिण भारत की लॉबी है वो ये चाहती है कि किसी भी सूरत में परिसीमन ना हो पाए. तो चाहे FCRA का बिल हो उसको लेकर के उन्होंने विरोध किया, और अब इस बिल को लेकर भी.
0: सो द मोमेंट आई गेट द नंबर्स देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल सेशन,
2: देयर
0: इज गोइंग टू बी अ स्पेशल सेशन.
1: जहां तक प्रोरोग की बात है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आया है कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब 71 डेज तक उन्होंने पार्लियामेंट को प्रोरोग नहीं किया था सेशन को, क्योंकि तब प्रेसिडेंट जेल सिंह थे और उन्हें ये लग रहा था कि अगर मैंने प्रोरोग कर दिया हाउस को तो तब ये इतने ज्यादा उनके रिश्तों में खटास आ चुकी थी कि ये लग रहा था कि अगर हाउस प्रोरोग किया पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी तो मुझे डिसमिस कर देंगे और मैं अपने लिए पार्लियामेंट में नहीं जा पाऊंगा.
0: सो लीगली द गवर्नमेंट इज ऑन फर्म ग्राउंड.
2: हां वो तो
0: नंबर आएगा स्पेशल सेशन का. एंड खड़गे जी इज आल्सो सेड कि आप 543 ही रखिए नंबर को, डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए.
3: साहब कितनी भी चिट्ठी लिख ले प्रधानमंत्री मोदी को, बिल तो पास होना है और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले पास होना है.
0: डिलिमिटेशन बिल
3: बिल्कुल सरकार तैयारी में है, 5 राज्यों में चुनाव जाने के पहले सरकार ये बिल पास करा लेगी. सरकार उसी रणनीति पर, हो सकता है विशेष सत्र बुला ले अगर बहुमत आ जाए तो, और नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि अभी विंटर सेशन आने वाला है तब तक सरकार सारी व्यवस्था कर लेगी.
1: ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है वो भी इसलिए रुका हुआ है
3: बिल्कुल,
1: क्योंकि डीएमके अगर सपोर्ट करती है, अगर डीएमके इंडिया का पार्ट बनती है तो क्या डीएमके कैबिनेट का भी हिस्सा बन सकती है?
3: शरद पवार
1: ये भी एक शरद पवार
2: एक
0: अनार 100 बीमार टाइप का हो गया कि भाई पहले आप बताइए you should get NCPI, you have to get these people from NCP, Akali Dal,
2: but
4: when you add up, everyone matters.
2: Everyone matters.
0: Well, makes life very interesting for us. We have much more to discuss. The more activity you see, and it's fascinating, but it's also amazing that we constantly have people who will help us make sense of a lot of developments that we see every single day. In a week, we have plenty of things to discuss by the end. As always, it's been a pleasure. Thank you very much, gentlemen, for having joined us. And remember, when it really matters, on every big story, the buck stops here. Thanks for watching.
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense.
8: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, in a surprising twist in the fallout between Kangana Ranaut and Baba Ramdev on the occasion of Raksha Bandhan, Kangana has seemingly chosen to put the past behind her, calling it a moment to forgive her brother. Our next report tells you more.
9: A public spat, a few sharp exchanges, and now a Raksha Bandhan truce. Kangana Ranaut and Baba Ramdev have seemingly decided to end their recent feud on the occasion of Raksha Bandhan. It all began when Baba Ramdev took a swipe at Kangana over her Gen Z is gutter generation remark, to which Baba Ramdev criticized her statement as a sign of a spoiled mind and questioned her past and personal life.
10: Swami Ramdev ka yogdan kya hai, ye desh janta hai. इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता.
9: कंगना हिट बैक, अक्यूजिंग रामदेव ऑफ क्रॉसिंग एवरी बाउंड्री ऑफ डिसेंसी. And then came her sharpest jibe yet. But on Raksha Bandhan, the tone changed. Ramdev shared a message calling for dialogue and to end the hostility, saying that he did not want to escalate the controversy.
10: पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धा में बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है. विवाद को संवाद से खत्म करें. आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.
9: Kangana then shared Ramdev's video on her Instagram stories and appeared to accept the olive branch, calling Baba Ramdev her brother. Kangana wrote that festivities are meant for forgetting mistakes and letting bygones be bygones. From accusations and personal jibes to sweets, forgiveness and a message of dialogue, Kangana and Baba Ramdev have seemingly chosen peace over another round of the public spat.
10: प्रीति से आगे बढ़े.
9: ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी.
10: संदेश है.
8: And finally, the wait is almost over for one of the biggest video game launches in recent times, Grand Theft Auto VI. Years before its release, GTA 6 has already become a global phenomenon. From Vice City to massive online frenzy, GTA 6 is driving gamers down the memory lane. We leave you with this report.
11: It is the most anticipated video game in history. And Rockstar Games has just dropped a massive 26-minute extended look at Grand Theft Auto 6 or GTA 6 directly on Netflix. The footage has set the internet ablaze, but behind the online euphoria, a serious storm is brewing over digital media ownership and platform security. The 26-minute showcase gives an unprecedented deep dive into the fictional state of Leonida, Rockstar's massive satirical take on Florida, from the neon-drenched streets of Vice City to alligator-filled swamps. Literally, hyper-realistic graphics, complex crowd physics, and seamless dual protagonist storytelling. The Netflix presentation has left millions of gaming fans ecstatic.
12: I guess they know we're coming.
13: Yep. More than 13 years in the making since GTA 5, dropping a massive 26-minute showcase on a streaming giant rather than traditional channels marks an unprecedented multi-million dollar marketing pivot.
14: Please, don't fucking move!
13: This strategic power move appears to be designed to reclaim the narrative following devastating cyber leaks that exposed early development code of the game, proving Rockstar and GTA still command global pop culture like no other. Yet this massive showcase follows severe turbulence for the publisher. Compounding the friction, a recent widespread PlayStation 5 network blackout left millions of players logged out of their digital game libraries. That PS5 outrage has now triggered a fierce consumer backlash against the industry's digital-only push. Dedicated fans are taking to online platforms to forcefully demand guaranteed physical disc releases for GTA 6, arguing that publishers should never take away a player's access to a title that they bought and supposedly own.
11: 26 minutes of gameplay footage proves Vice City is bigger and more immersive than ever. But the events from the last couple of weeks prove something else, that gamers still want hard disks in their hands. Whether Rockstar and Sony pay heed to the gamers' rebellion remains to be seen. Well, for now, I'm here in Maximum City, and GTA 6 is all set to launch on Thursday, November 19th, 2026.
15: Has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
16: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get you the top stories of the day, here's a quick check of the headlines that we're tracking at this hour. Jay Shankar reviews rescue efforts. India sends 47.5 tons of relief. Jay Shankar takes a stock of the rescue operations in flood-hit Nepal as India puts relief efforts on the highest priority. Over 400 Indians are stuck in China. They are safe. 320 are still untraceable after Nepal floods. The MEA says that India is ready to send NDRF help to Nepal. NDTV is the only channel reporting from the disaster zone in every part of Nepal. Your channel gets you the latest from flood-hit areas. In tears, B. Nagendra, Karnataka minister, quits the cabinet second time over same corruption scandal. Starting this edition with the breaking news that's just coming in, there are FTA raids in 34 canteens and kitchens across government and private medical colleges, hostels, food safety.

0: hills of Nepal, which is around 2 hours drive from Kathmandu. But the river, when it travels down to the plain, it's called Narayani, and when it enters Bihar, the same river is called Gandak. You can see the team of experts, the deep divers, the disaster management team led by senior officials. They're all actually trying to fish out the bodies which might have been carried out from there. Around 170 to 80 bodies have already been fished in last 24 hours. There one dead body has been...
1: Yes. We have seen, we have got the information, and we are planning to recover that dead body.
0: These jawans, they are using rubber tubes to cross over the river. They are going there to dig out the body because of the silt. The body actually is half buried inside the silt. So dig out the body and then this body will be brought out here. You can see the stretcher over there. So that stretcher will be used to bring the body to this side of the sewer, and then it will be taken to the hospital. We are right now in the Udyog Sangh building of Chitwan, and this hall you can see is filled with relatives of those who have lost their loved ones in this tragic incident which has struck Nepal. Now the local administration, what they have done is they have clicked the picture of the dead bodies which have been being displayed here on the screen. Aap logon ke koi rishtedar yahan pe?
2: Haan, rishtedar hai.
3: Kaun?
2: Behan hai.
3: हाँ
2: नहीं नहीं मिले हैं, पहचान नहीं, बला से नहीं पहचानना है।
3: ये सब दिखाने से कोई पहचान में नहीं आएगा, मेरे को लगता है ये सब ये फालतू की चीज़ें, ऐसे थोड़ी ना पहचान में आएगा। इतना देर से पानी से आदमी फूला हुआ है, कैसे पहचान में आएगा?
0: जो ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं वो फूल गए हैं और वो ऐसे शेप में आ गए कि जिसे आप पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उनके जो परिजन हैं वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं उन बॉडीज़ को। तो यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे बॉडीज़ को मॉर्चरी है, वहाँ रखा गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे उस बोन बॉडीज का पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, और उसके बाद लोग वहाँ से पहचानने के लिए, अगर जो पहचान ले रहे हैं तो फिर वो वहाँ जा रहे हैं, उन्हें बॉडी हैंडओवर कर दिया जा रहा है। चितवन से मैं प्रभाकर कुमार, NDTV।
4: Shifting our focus to more breaking news that's coming in, and this is a bulletin that's been taken out by the Ministry of External Affairs. Randhir Jaiswal there posting on X and giving an update on